का प्रयत्न इसमें नहीं है, कोई भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। पुरुष प्रयत्न से ये वाणी नहीं निकली गई और इसीलिए ये वाणी अमृत समान है। यानी अगर ये वाणी का पान, ये वाणी का श्रवण, ये वेद वाणी का मनन, चिंतन और निधि ध्यासन जो भी कर लेगा वो अमृत हो जाएगा। हाँ, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तमेवं विदित्वा अमृतम अत्येति। तम एव, वो परमात्मा को जानने से ही अमृत मिलता है, वो परमात्मा को जानने से ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यद गत्वा न निवर्तन्ते, याने मृत्यु से जन्म से पार हो जाते हैं। आत्मानं चेत विजानियात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छम तस्य कामाय शरीरम अनुस्वंजरेत। ये शरीर या अगले जन्म के शरीर में वो संतप्त नहीं होता, अगला जन्म ही नहीं होता है। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, पुनः आवृत्ति नहीं होती है। क्यों इतना सारा कहा है? ये वेद वाणी अगर जो आपने सुन ली तो वो अमृत हो जाता है, इसीलिए परमात्मा को कहा कि आपकी वाणी अमृत देने वाली है, अमृत करने वाली है। यानी यहाँ देखिए, ये बहुत गूढ़ रहस्य हमें दे दिया है कि अमर बनने के लिए इतनी जड़ी बूटी दे काफी है, वेद वाणी को ग्रहण कर लो। जहां भी वेद वाणी कही जाती है, ये वेद वाणी, वेद वाणी यानी ये वेद का अंत का भाग जो उपनिषद है वो अंतिम वाणी है। क्योंकि वहां उपनिषद में क्या है तो बोले, उपनिषद में मात्र ब्रह्म ही एक प्रतिपाद्य विषय है सब उपनिषदों का, ये एक बात। और वो ब्रह्म मात्र प्रतिपादित नहीं है, वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसे जीव ब्रह्म ऐक्य के महावाक्य उपनिषद में आए गए हैं। और ये वेदवाणी अभी यही आपको अमृत बना सकती है। हे परमात्मा, हे शिव जी, ये वेदवाणी ऐसी जो है, आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा है कि सुनने वाला अमृत तत्व को पा लेता है। वाणी बोलनी भी नहीं पड़ती है, सुन के ही वो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसी वाणी का प्रभाव है आपका। तो ऐसी वाणी आप उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी की वाणी आपको आश्चर्यजनक कैसे लगेगी? आपकी ही वाणी अमृत देने वाली है तो ब्रह्मा जी की थोड़ी अल्प वाणी आपको क्या आश्चर्य करेगी? और फिर भी आपके गुण के वर्णन के पुण्य से, हे महादेव, मुझे पता है कि ये वाणी कम ही है, इतना पता है तो आप मुझे पूछेंगे कि तो आप भी क्यों वर्णन कर रहे हैं, हे पुष्पदंत जी? तो कहा कि हे महादेव, मेरी वाणी को मैं पवित्र कर रहा हूं। ये बहुत समझने की बात है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले वक्ता को भी ये समझने वाली बात है कि ये जो वाणी जो है, ये वाणी ने बहुत गलत कर्म कर लिए है। हाँ, गलत साक्षियां दी होगी आपने, हाँ, गलत बोला होगा, हमने असत्य भी बोला होगा। अच्छे के लिए बुरे के लिए वो भूल जाओ, कल ही हमने बोला कि अच्छे के लिए भी असत्य मत बोलिए। तो ये वाणी ने जाने अनजाने में, अज्ञान में बहुत ही असत्य कर दिया है। अब उसका रास्ता क्या है? ये वाणी को पवित्र मैं कैसे करूं? हम क्या करते हैं, कोई जगह को पवित्र करना है या हमें स्नान करने का समय नहीं है और हमें मंदिर में जाना है, रास्ते में मंदिर पड़ता है और स्नान करने का समय नहीं है और सुबह से हम घूम रहे हैं इधर उधर, तो क्या करेंगे? भाई, पानी जो है अपवित्रम पवित्रम वा करके पानी को हम छोड़ देते हैं। और मंदिरों में नल की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था होती है, हाथ पैर मुंह धो लिया और मान लिया कि हम पवित्र हो गए और परमात्मा के पास चले जाते हैं। कैसी अपेक्षा से कि हे परमात्मा, नहाए हुए नहीं है, नए कपड़े नहीं पहने हैं, सुबह से बहुत सी जगह से घूम फिर के हम आए हुए हैं, फिर भी मान लीजिए, इतना पानी छिड़काव किया तो मान लीजिए कि हम पवित्र हो गए, ऐसे आप हमें स्वीकार लीजिए। ऐसे ही हे परमात्मा, ये मन वाणी वचन और कर्म से बहुत सारा गलत हो गया, अब मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपका श्रवण कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, ये कोई भी विधि से ये शरीर मन बुद्धि के संगात को मैं पवित्र कर रहा हूँ, ऐसा आप मान लीजिए और मैं पवित्र इस प्रकार

और मैं पवित्र हो रहा हूँ। तो ऐसे मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए ये स्तुति मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये स्तुति मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी क्या कि ये शरीर मन बुद्धि से पूर्व में कितने भी पाप अगर हो गए हो, बुरा असत्य हो गया हो, उसे सब आप भूल जाइए। अभी उसकी वाणी सुन रहे हैं ना, ये अतीत पंथानम, इतना एक पद भी, एक शब्द भी परमात्मा का। और इसीलिए कहा है ये सब महिमाएं जो है ये भगवद गीता शंकराचार्य जी ने कह दिया है। आह, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चाम, तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। आह, क्या कह दिया, भगवद गीता किंचित अधीता, ओहो थोड़ा भी भगवद गीता का पान कर लिया, अनुष्टुप छंद का चार चरण है उसमें से पहला पद भी सुन लिया कानों में तो हो इनफ, ये नहीं सुना तो गंगा जल का थोड़ा पान कर लिया तो भी इनफ है, ये भी नहीं हुआ तो मुरारी भगवान का एक बार भी नाम लिया मुरारी इनफ। अब चिंता छोड़ दीजिए, उसकी बात यम नहीं कर सकते हैं, और ये बात गलत नहीं है, इतना सोच लीजिए। परमात्मा को क्या करना है, परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आओ ना तो सब कुछ झंझट चिंताएं छोड़ के आओ। हे परमात्मा, चिंताएं तो छोड़ के आओ, पर जो पूरा हो गया है उसका क्या, उसका आप कुछ प्रबंध पहले कर दीजिए। तो उसका प्रबंध मैं करता हूँ ना, मेरा नाम श्रवण कर लिया, मुझे याद किया तो तुम्हारे सब पूर्व पाप छूट गए हैं, अब क्या इतना झंझट है, इतना बता दिया। आप विश्वास, इसमें श्रद्धा और विश्वास यहाँ चाहिए। जो श्रद्धा निगमाचार्य वाक्येषु विश्वासः, निगम और आचार्य के वाक्य पे विश्वास रखिए कि ये हो ही जाता है। पर आप कैसे कह सकते हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? नहीं तो हम बोलेंगे ही नहीं। यथे दांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, दूसरे श्लोक में कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, यहाँ प्रारब्ध कर्म को भी परमात्मा ने बचा के नहीं रखा, ऑल और नन। राजा जब देता है तो उसके महिमा से देता है, राजा ऐसी चीज का दान करता है जिसे लगे कि यह राजा का दान है, और ये परमात्मा तो सम्राट है, स्वराट है, राजाओं का भी राजा है, वो देगा तो क्या देगा आपको, उसकी महिमा जरा भी इचनी भी विचलित नहीं हो ऐसा देगा। आपके स्टेटस के मुताबिक ही आप किसी को गिफ्ट देते हैं, छोटे आदमी को देनी है तो भी आप उतनी ही गिफ्ट देते हैं जो आपके स्टेटस को बराबर फिट बैठे, आप उससे एक पैसा भी कम की गिफ्ट नहीं देंगे। क्यों भाई, मैं दे रहा हूं। तो यहां परमात्मा को भी होगा कि मैं दे रहा हूं, और जब वो देने आए तो वो तो ये अमृत का ही दान कर रहा है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देखिए, अपवित्र तो मानना खुद को ठीक ही नहीं है, और अगर मान भी लिया तो रुजिनम संतरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। हाँ, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, ये ज्ञान स्वरूप, ये परमात्मा की थोड़ी बात सुन ली तो ये सब पाप से आप पर हो जाएंगे, ऐसा निश्चिंत होके, ऐसी हल्की उपाधि को इतनी हल्की करके उसका नाम ले लीजिए। खूब हल्का होना चाहिए। देखिए, वो हवा भरते हैं ना, आप ये चौपाटी में आप जाइए, ये बलून में हवा भरते हैं, तो बलून में जब आप अपने मुख से हवा भरते हैं तो बलून ऊपर जाता है नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर लाइट गैसेस, हीलियम। हीलियम का वजन कैसा है, ये आपका ऑक्सीजन और प्राणवायु का जो वजन है उससे हीलियम कैसा है, बहुत कम वजन, हल्का वजन वाला है। हवा तो भरनी, क्राइटेरिया क्या है कि हवा तो भरनी ही है, पर कौन से टाइप की, कौन सी क्वालिटी की हवा, ऐसे ही फुग्गा ऊपर नहीं जाएगा। ये अपनी हवा से, प्राणवायु से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें विशेष वायु भरा तो वो बिना प्रयत्न ऊपर चढ़ने लगेगा। आप परमात्मा के नाम के वायु अपने मन में भर लीजिए। ये मन या हमारे जो ये बलून जो है उसके अंदर हवा कैसे जाएगी, कौन से नाम की जाएंगी, देखिए परमात्मा को, उसके सगुण साकार रूप को देखिए, बोलिए उसकी वाणी। नहीं बोलना है तो मन से उसे ही सोचिए, तो ये गैस भरता रहेगा परमात्मा का, और आप अपलिफ्टेड हो जाएंगे, आप अपने आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अपवित्रता का, पाप का भाव आप अपने मन से निकाल दीजिए, इतना ही भगवान पुष्पदंत जी को हमें कहना है। अब
हे परमात्मा, इतना जानने के बाद जो आनंद हो रहा है वो आनंद ये शरीर मन बुद्धि ये परमात्मा को तद्रूप से जानने के बाद जो पीछे का जो अभी शरीर रहने वाला है प्रारब्ध रहने वाला है वो प्रारब्ध में मैं करूँ क्या, तो उसमें पुष्पदंत जी ने जो किया वो हम करेंगे तो ही हम सुख पा सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब शिव के सगुण शक्ति सगुण रूप की, देखिए हमें समय ही नहीं मिला है परमात्मा के सगुण रूप की शक्ति को देखने का, हम सगुण रूप देख के हमारा छोटा मोटा काम करवा के चले जाते हैं। हाँ, और वो तो उसका प्रभाव ही ऐसा है कि उसे देखने से ही काम हो जाता है, इसीलिए शक्ति भी मत डालिए उसमें, प्रार्थना करने की भी शक्ति मत डालिए। स्वामी दयानंद जी हमारे बड़े गुरु जी, एक बार प्रवचन था तो उन्होंने एक शब्द इतना सुंदर बताया, उन्होंने बोला कि अगर आप स्टेशन पे बैठे हैं और आपको चाय पीने का मन हुआ और चाय वाला यहां से यहां घूमता रहता है तो आप क्या कहते हैं, ए चाय, चाय बोलेंगे तो चाय वाला आएगा कि नहीं, चाय बोलने से चाय वाला पूरा आदमी आ जाता है, ग्लास आ जाता है, चाय आ जाती है और आप पीने भी लगते हैं, ओ बड़ा भूख लग गई ट्रेन में से। हाँ, तो ऐसे ही सेड के वेन्यू से हरे कृष्ण, उसके आगे आप तकलीफ में आ गए बराबर के कुछ हो गया है, ये इतना ये कुछ हो गया है, तो बोलने के पहले आप निर्देशन तो देंगे ना कि किसको, क्योंकि इतनी वैरायटी है, अभी कृष्ण भगवान और शंकर भगवान दोनों है तो बोलेंगे किसको बुलाता है, दोनों बैठे हैं तो नाम तो बोलना ही पड़ता है, तो बोले हरे कृष्ण, तो वेन्यू से हरे कृष्ण, चाय बोलने से चाय वाला पूरा आ जाता है, ऐसे हरे बोलने से हरण हो ही जाता है तकलीफ का, आगे बोलना ही नहीं है, आगे कुछ बचता ही नहीं है, कंप्लेन बचती ही नहीं है, इतने सजग हो जाइए परमात्मा के प्रति, हरे कृष्ण इनफ हो गया, उसके आगे आपकी कंप्लेन करने के लिए आप होने चाहिए ना कंप्लेन, इतना विश्वास इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरे कृष्ण बोले तो हरण, एक पूरा शरीर मन बुद्धि का जड़ संघात भी चाय बोलने से आ जाता है तो हरे कृष्ण बोलने से वो नहीं आ ले सकते, आपका हरण नहीं कर सकते क्या, इतना विश्वास नहीं है, हरण तो हर बार होता है, विश्वास नहीं है, हरे कृष्ण बोलने के बाद हम अपनी रिकॉर्ड शुरू करते हैं ना उसमें वो किया हुआ हरण भी फिर से आ जाता है। वी आर एडिंग टू अवर डिफिकल्टीज, वो तो जाती ही नहीं है, उससे ज्यादा आती है कि हाँ तुझे ये भी करना है तो चलो कर देता हूं। तो स्टॉप, प्रे एंड स्टॉप। तो यहाँ ये शिव क्या, ये सगुण परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 4। तब

अब कहा सगुण साकार के रूप का वर्णन अब पुष्प दंत जी क्यों करने लगे, क्योंकि जो अब क्या हो गया, अहम तत्व से अहम ब्रह्मात्मी रूप से अगर जब आपने परमात्मा को जान लिया तो लाल चश्मा पहनने से सब क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ऐसे अहम ब्रह्मा से वृत्ति आ गई तो सब क्या दिखाई देगा, सब अब परमात्मा दिखाई देगा भाई। सर्वम खलविदम ब्रह्म अब होगा, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि अब होगी। अब तो मजा है जीने की, जीने की मजा तो अभी है। हा? ये ब्रह्म तत्व कोई उदासी हो जाने की बात नहीं है, कोई गंभीर्य का विषय नहीं है। विषय गंभीर है पर गंभीर्य का विषय, गंभीर होने का विषय नहीं है। विषय भले गंभीर हो तो बोले कि हे परमात्मा अब मुझे पता चल रहा है, अब तक मैं समझ रहा था ये घर मैंने बनाया, ये मैंने करा, ये मैंने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जगत की मूल में ही उत्पत्ति किसकी है भाई, उत्पत्ति जगत की, उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण तो स्वयं आप है। कहां बताया है, तैतरीय उपनिषद में बताया है। मैं उपनिषद की बात जान रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, पर वो सुनी हुई बात अब मेरे समझ में आई कि सब आपका ही पसारा है, सब आप ही है। जहां देखू वहां एक ही साई, घट घट बसे अंतर्यामी, रंगवदूत जी ने लिखा है। उस काले का सभी पसारा छोड़ दिया माई संसारा, काहे अब तू शोक करे है। तो यही परमात्मा सब जगह है। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवन्ति यत् प्रयत्न विषम अभिविशन्ति इति। ये परमात्मा में से ही सब कुछ उत्पत्ति स्थिति और लय है। हे परमात्मा ये मैंने कब जाना, जब वो मेरी जीवगत बूंद थी, वो बूंद तेरे परमात्मा के तेरे ज्ञान सागर में आ गई तो ये बूंद समुद्र बन गई, और समुद्र बन के मैंने देखा कि ये सब परमात्मा मई ही है। पहले ये वो ब्रह्म बन जाइए ये तत्व, और फिर आपको लगेगा कि ये उत्पत्ति स्थिति और लय ये परमात्मा में से ही, ये मुझ में से ही होती है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो मुझे लगता है हे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले आप ही एक है। तीन जो वेद है ये रूप वेदांतर्गत, यजुर्वेदांतर्गत अथर्व वेद है, उसको समाया लिया गया है। इसलिए तीन वेद बोलेंगे तो ऐसा मत सोचना कि भाई वेद चार है और तीन क्यों कहे हैं, उसकी चिंता मत करना, चारों आ गए हैं। तो सब तीन जो त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, बोले कि तीन वेद जो है वो उसमें वस्तु रूप से जो तत्व को प्रतिपादित किया है वो सत्वादि गुणों से लेकर तीनों शरीर में अलग अलग रीति से जो व्याप्त हुआ है वो आपका ही ऐश्वर्य है, और उसे मंद बुद्धि वाले कई खंडन करते हैं। क्या खंडन करते हैं कि ये परमात्मा ने, ये जगत उत्पत्ति स्थिति परमात्मा ने बनाई नहीं है, ये परमात्मा का काम नहीं है। ऐसे बोलने वाले जो मन मंद बुद्धि मीमांसक है उसका कोई भी काल में कोई भी लोग में कभी भी कल्याण नहीं है। विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत इहै के जड़ दिया, ये जड़ बुद्धि वाले जो है ऐसा आक्षेप वाला जो विधान करते हैं वो उसे मैं मंद बुद्धि वाले कहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हे परमात्मा, परमात्मा ने अपनी शक्ति माया से ये जगत की उत्पत्ति की, तो जगत की उत्पत्ति से आकाश से लेकर ये पुरुष तक हमारा ये जड़ शरीर मन बुद्धि का संघात है, वहां तक हम उत्पन्न हो गए। और यहाँ जो लिखा है कि तीन सत्वादि गुणों से अलग अलग शरीर बने, यानी क्या कि माया में जो है हमारा, हम जहां से जिसमें से बने हैं उसमें उसके गुण तो आने ही वाले हैं। तो माया के गुण क्या है, सत्व रजस और तमस माया के गुण है। तो ये सत्व रजस और तमस माया के गुण ये तीन शरीर में आ गए हैं, उसे तीन शरीर बने हैं। कौन से तीन शरीर बने हैं, बोले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ऐसे शरीर बने हैं, ऐसा जानने के बावजूद, ऐसा न जानते हुए कोई अलग तत्व से ये ये जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसे जो मीमांसक जो मानने वाले हैं, कोई अणु में से कहते हैं, कोई क्षणिकवाद में से कहते हैं, कोई परमाणु में से कहते हैं, तो ऐसे जो कहने वाले मीमांसक हैं
वो मात्र अल्प बुद्धि का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसी अल्प बुद्धि मेरी कभी न हो, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण मान रहा हूँ। ऐसी ही बुद्धि हमारी भी रहे, ऐसी ही परम पूज्य परमात्मा और गुरुजनों को प्रार्थना करते हैं। अब हम, आज 22 तारीख है, अब हम 24 तारीख को सुबह मिलेंगे, तब ये स्तोत्र जहाँ से हमने रखा है वहां से हम आगे उसका पाठ और स्तुति करेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

नमः, वर्ष्याय नमः, वर्षरूपाय नमः, कुमाराय नमः, कुशलाय नमः, अमलाय नमः, मेघ्याय नमः, अवर्ष्याय नमः,

धनाधिपाय नमः, यजुर्मूर्तये नमः, साममूर्तये नमः, ऋङ्मूर्तये नमः, मूर्तिवर्जिताय नमः, व्यक्ताय नमः, व्यक्ततमाय नमः।

नमः विष्णुवल्लभाय नमः कमलासनकालाग्नये नमः कमलासनपूजिताय नमः कालाधीशाय नमः त्रिकालज्ञाय नमः दुष्टविग्रहवारकाय नमः नाट्यकर्त्रे नमः नटपराय नमः महानाट्यविशारदाय नमः विराड्रूपधराय नमः धीराय नमः वीराय नमः वृषभवाहनाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभाधीशाय नमः वृषात्मने नमः वृषभध्वजाय नमः महोन्नताय नमः महावक्ष्याय नमः महावीराय नमः महाभुजाय नमः महास्कन्धाय नमः महाग्रीवाय नमः महावक्त्राय नमः महच्छराय नमः महाहनवे नमः महादंष्ट्राय नमः महादोष्टाय नमः महोदराय नमः सुन्दरभ्रुवे नमः सुनयनाय नमः सुललाटाय नमः सुगन्धराय नमः सत्यवाक्याय नमः धर्मवेत्रे नमः सत्यज्ञाय नमः सत्यवित्तमाय नमः धर्मवते नमः धर्मनिपुणाय नमः धर्माय नमः धर्मप्रवर्तकाय नमः कृतज्ञाय नमः कृतकृत्यात्मने नमः कृत्यकृत्याय नमः कृतागमाय नमः कृत्यविदे नमः कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः कृतज्ञप्रियकृत्तमाय नमः व्रतकृते नमः व्रतविच्छ्रेष्ठाय नमः व्रतविदुषे नमः महाव्रतिने नमः व्रतप्रियाय नमः व्रताकाराय नमः व्रतधाराय नमः व्रतेश्वराय नमः अतिरागिणे नमः वीतरागाय नमः रागहेतदे नमः विरागविदे नमः रागघ्ने नमः रागशमनाय नमः रागदाय नमः रागिरागविदे नमः विदुषे नमः विद्वत्तमाय नमः विद्वज्जनमानसंश्रयाय नमः विद्वज्जनाश्रयाय नमः विद्वज्जनसव्यप्राक्रमाय नमः नीतिकृते नमः नीतिविदे नमः नीतिप्रदात्रे नमः नीतिवित्प्रियाय नमः विनीतिवत्सलाय नमः नीतिस्वरूपाय नमः नीतिसंश्रयाय नमः क्रोधजिते नमः क्रोधिलाय नमः

0: इति श्री शिवरहस्ये सप्तमांशे शिवसहस्रनामावलिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Music. In this, you are about to listen Shiva Bhajans in Hindi. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

कानाम् जुषाणो अग्निराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा आकृते ऊर्ध्वनाभसं मारुतं गच्छतम् संते मनो मनासासं प्राणः प्राणेन गच्छतां रेलस्यग्निष्ट्वा अश्रेणात्वापस्त्वा समारिणन् वातस्य त्वाद्राज्यै पूष्णोरग्ह्या ऊष्मणो व्यथिषत् प्रयूतं द्वेषाः घृतं घृतपावानः पिबतवसां वसापावानः पिबत अन्तरिक्षस्य हविरासि स्वाहा दिशः प्रदिशा आदिशो ओभिदिशा उद्दिशो ओ दिग्भ्य स्वाहा ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे ए अङ्गे निधीत ऐन्द्र उदानो अङ्गे ए अङ्गे निदीधे देवत्वष्टर्भूरि ते सज्ञसा मे तु सलक्ष्मा यद्विषु रूपं भवाति देवत्रायन्तमवासे सखायो नुत्वा माता पितरो मदन्तु समुद्रं गच्छ स्वाहा देवज्ञ सवितारं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्द अज्ञसि गच्छ स्वाहा द्यावा आपृथिवी गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा नभो ओ दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो ओ मेहार्द्यच्छ दिवन्ते धूमो गच्छ त्वन्तरिक्षं ज्योतिः पृथिवीं भस्मनापृणः स्वाहा मापो मौषाधीर्हिज्ञसीर्धाम्नो धाम्नो राजग्रस्ततो वरुणनो मुञ्च यदाहुरज्ञा इति वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च सुमित्रिया न आप ओषाधयः सन्तु दुर्मित्रियास्त

किञ्चादुरितं मयि यद्वाहमाभिदुद्रोहयद्वा आशेप उतानृतम् हविष्मातीरिमा आपो ओ हविष्माँ आवीवासति हविष्मा अन्देवो अध्वरो हविष्माँ अस्तु सूर्याः अग्नेर्वोपन्नगृहस्य सदासि साधयामि इन्द्राग्न्योर्भा आगधेयी स्थमित्रावरुणयोर्भागधेयी स्थ विश्वेशान् देवानाम् भागधेयी स्थ अमूर्या उपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सह तानो हिन्वन्त्वध्वरम् हृदे त्वा मनासे त्वा दिवे त्वा सूर्या आयत्वा ऊर्ध्वो अध्वरन्ति विदेवेषु होत्र आयच्छ सोमाराजन् विश्वास्त्वं प्रजा उपावारोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावारोहन्तु शृणोत्वग्निः समिधाहवं मे शृण्वन्त्वापोधिशनाश्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञ

गूर्ता अमृतस्य पत्नीः तादेवीर्देवत्रे मयि यज्ञन्नायतोपाहूताः सोमस्य पिबत माभेर्मा संविक्था ऊर्जन्धस्वधिशा नेवी द्विसती वीलये।

अथ द्रवीणा स्युर्वे पन्याया ओयि समिद्धा क्राया भूतायेरा अग्नेरौहो वा हायवृत्रा।

0: समिद्धा शुक्रया ओ हो भूतो हये।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: दशषष्ठः
1: ॐ नमः शिवाय. डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे. वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: पिंजरे में पकड़ लिया और कहते हैं बच्चों को कि ले उधर गांव में उधर खेत में ले जाकर छोड़ के आओ. लेके जाते थे बचपन में और करते क्या थे कि उस चूहे के पूंछ में एक रस्सी बांध लेते थे. खेत में जाके पूंछ में रस्सी बांध ली और उसका पिंजरा खोल दिया. रस्सी लंबी है छोड़ दिया. चूहा इतनी तेजी से दौड़ता है और फड़ से रस्सी खींच लिया बेचारा. वो सोच रहा था कि आजाद हो गया स्वतंत्र हो गया. क्या प्रसन्नता से दौड़ता था. उसे क्या पता कि पूंछ में रस्सी बांधी और खींचने वाला कोई और है. फड़ से खींच दिया बेचारा. वो उसकी गति रुक गई और फिर धीरे धीरे वो रस्सी को खींच लिया खींच लिया. वो आना नहीं चाहता पीछे लेकिन आना पड़ता है. आना नहीं चाहता है आना पड़ता है. जबरदस्ती आता है जबरदस्ती आता है. और जब नजदीक आया तो फिर रस्सी ढीली कर दी तो दौड़ा. वो इतनी तेजी से दौड़ के जाता है कि सोचता है कि अब स्वतंत्र हो गया अब आजाद हो गया. लेकिन तब तक फिर वो रस्सी खींच लिया. बेचारा हैरान होता था वो है? अब हमको मजा आता था. वो हैरान होवे और हमको मजा आवे. बच्चों को तो मजा आता है ना है? वो हैरान होवे और बच्चों को मजा आवे. तो ये अलग रूप में खेलता इस तरह. तब फिर कोई बुजुर्ग लोग दिखाई पड़ते थे वो देखते थे और उसको डांटते थे. अरे क्या करते हो बेचारे छोड़ो इसको कितना दुख कितना कष्ट हो रहा है ऐसा करना चाहिए. फिर हम भी डरते थे और छोड़ देते थे बेचारे. कोई दूसरा न डांटे तब तक खेलते रहते थे और कोई डांटता था बेचारे को परेशान करता है छोड़ दे तो फिर छोड़ देते थे. तब जाकर उसको शांति मिलती थी. और कई बार तो देखते देखते बड़ी विडंबना होती थी. हम उसको छोड़ देते थे. छोड़ दिया कि वो कौवा आ गया उसको क्या पकड़ लिया ले गया. इससे अच्छा तो हम ही खेलते तो बचता कुछ और समय और हमारा छोड़ना ही उसके लिए मृत्यु बन गया कि नहीं बोलो. कभी कभी तो ये दुर्भाग्य की बात थी उसकी. हम छोड़ देते थे छोड़ते ही वो दौड़ता था. दौड़ते थे कौवा देख लिया जा फट से पकड़ लिया ले गया मर गया बेचारा. इससे अच्छा तो हम खेलते थे तो और एक दो चार घंटा तो और जीता ना. वो उतना भी नहीं जी पाया. ये तो अनिर्वचनीय सृष्टि है. कौन किससे खेलता है और कौन किससे हंसता है और कौन किससे रोता है और कौन किसको रुलाता है ये तो अनिर्वचनीय. इसका हिसाब करके इसका पार नहीं पाओगे. तो इसलिए तो वेदांत इसको अनिर्वचनीय कहता है. तो स्वच्छ या सृष्ट माविष्य. यदि उस चूहे के हृदय में मैं खुद बैठा हुआ होता तो क्या मेरी ये अवस्था होती ये हिम्मत होती उस चूहे को इस तरह सताने की. यदि उस चूहे के हृदय में वो कौवा खुद बैठा हुआ होता तो कौवे की हिम्मत होती कि उस चूहे को पकड़ के खाने की. हम लोग हमारी दृष्टि से देखते हैं कि कौवा अलग है चूहा अलग है. खेलने वाला अलग है, खिलाने वाले चूहे अलग हैं इत्यादि, ये अलग अलग दृष्टि है। तब हम इस तरह की परिभाषा करते हैं कि ईश्वर का ये खेल भी क्या खेल है कि अपने ही संतति, अपने ही सृष्टि से उत्पन्न किए हुए जीवों को रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर, वो खेलना भी कोई खेल है उसकी। ये प्रश्न तो तब संभव था जब मैंने पहले जो दृष्टांत दिया उस हिसाब से ये सिद्धांत तो होता, लेकिन नहीं है। स्वेच्छया सृष्टम आविश्य, वो तो हर चीज में प्रविष्ट कर गया। तब और जो पूछम पूछ के साथ बंधने वाला चूहा है वो भी वही है, और जो बांधकर खींचने वाला है वो भी वही है। खींचने वाला अलग नहीं है और खींचा जाने वाला अलग नहीं है। खाने वाला अलग नहीं है, खाया जाने वाला अलग नहीं है। जब एक दृष्टि सभी वही एक है तब फिर वहां ये समस्या नहीं आती है। जैसे कि स्वप्न की सृष्टि क्या है, एक ही तेजस पुरुष की कल्पना है। स्वप्न की जो तेजस माने सृष्टि है, वह स्वप्न माने तेजस पुरुष की सब कुछ कल्पना है। वह तेजस पुरुष ही स्वप्न में सब कुछ हुआ और सब कुछ के रूप में वही अस्तित्व में रह रहा है। यह होता हुआ भी तेजस यदि जग गया वह सृष्टि कुछ भी नहीं है, और तेजस पुरुष जब स्वप्न में है तो सब कुछ है। तो वहां पर भी वही नियम है, स्वप्न में कोई चूहा दिखाई पड़ा तो वह चूहा भी कौन है, वही तेजस है, देखने वाला जो है वही दिखाई पड़ने वाला हो गया, वहां दोनों भिन्नता नहीं है। तो जब तक ये वेदांत के रहस्य को आप नहीं समझ पाओगे, इस सिद्धांत को नहीं समझोगे, तब तक ये जगत में ये उतार चढ़ाव में साम्यता नहीं आ सकती। साम्यता की दृष्टि है, साम्यता का व्यवहार नहीं हो सकता है। व्यवहार के अवस्था में विषमता ही है, लेकिन साम्यता की दृष्टि जब आपकी बनेगी वेदांत के माध्यम से, तब फिर इस जगत को आप सहज रूप में ले पाओगे। ये रहस्य बताने के लिए ही वेदांत का प्रवचन किया जाता है, ये सब सिद्धांत हैं। स्वच्छ या शिष्ट माविश्य विश्वम यो मनसि स्थितः, और ये सारा का सारा विश्व को उसने अपने ही संकल्प से उत्पन्न किया, और वह जो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है, जीव हैं, उन सब के अंतःकरण में अंतरात्मा के रूप में ही स्थित भी हो गया। तो ये वेद का वो मंत्र है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वासनात वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि। उसी को तो वासुदेव कहते हैं। वासुदेव उसका नाम नहीं है जो कि कोई वस्तु बना देवे और अलग रखे और अपने आप को अलग बैठ जाए, उसका नाम वासुदेव नहीं है। धागे का नाम वासुदेव है। धागे मिलकर आपस में कपड़ा बन गया और उसी कपड़े में कपड़े की आत्मा के रूप में धागा बैठा हुआ है, उपादान कारण, उपादान की कारणता यही है। मिट्टी घड़ा बनाकर घड़े को अलग छोड़ देता और मिट्टी अलग अपने असंग बनकर रहता, तब घड़े के फूटने का दुख मिट्टी को होता। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन घड़े के फूटने का दुख मिट्टी को नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिट्टी ही घड़ा बना और फूटा तो क्या, इसलिए मिट्टी को घट फूटने का दुख नहीं होगा। घट फूटने का दुख किसको होगा? आपको होगा, क्योंकि आप मिट्टी नहीं है, क्योंकि आपने घड़ा नहीं बनाया है और घड़ के आत्मा के रूप में आप नहीं बैठे हैं और आप अलग बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि घट मेरा इष्ट है, तब जाकर वो घट के फूटने का दुख आपको हो सकता है, मिट्टी को नहीं होगा। इसी तरह जगत की रचना उसी परमात्मा ने की, और पर इस सारे जगत में अंतरात्मा अस्थि भाति प्रिय, आगे आएगा ये प्रसंग, अस्थि भाति प्रिय ये परमात्मा का स्वरूप है। वह इस स्वरूप को बाद किए बिना ही हर पदार्थ में अनुस्वित होकर रह गया। ऐसा नहीं है कि घड़ा बना दिया और घड़े से अलग होकर, अस्थिता को अलग करके, भातिता को अलग करके, प्रियता को अलग करके और घड़ के अंदर बैठ गया, ऐसा नहीं है। इनके सहित क्योंकि ये स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण तो वो जहां रहेगा वहां रहेंगे। स्वच्छया सृष्टमा विश्व विश्वम यो मनसि स्थिता स्तोत्रेण स्तु यति अनेन स एव परमेश्वरा। कौन से परमात्मा की इन स्तोत्र के द्वारा स्तुति करते हैं? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इन स्तोत्रों के द्वारा कौन से परमात्मा की स्तुति करने जा रहे हो? तो उस परमात्मा की स्तुति करने जा रहे हैं जिसने संकल्प से सारे वस्तुओं को, जीव जगत को बनाया और उन जीव जगत में, अंतकरण में, मन में, अहम के रूप में, और जहां मन नहीं, अंतकरण नहीं है, वहां वह अस्थि भाति प्रिय के रूप में अनुस्वीत होकर बैठा हुआ है। ऐसे जो परमात्मा है, अनेन स्तोत्रेण स्तूयते, क्योंकि सैव परमेश्वर। तब बोले, अंतकरण में, मन में स्थित होकर रहने वाला तो जीवात्मा है, तो क्या तुम इन स्तोत्रों के द्वारा जीवात्मा की स्तुति करने जा रहे हो? अरे नहीं बाबा, वही परमेश्वर है। ये तुम्हारे न जानने के कारण ही जीव के रूप में परिभाषित किया गया है। भागत त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा जब आप इनका लक्षणा करते हो, जहद अजहद वह लक्षणा के द्वारा जब विचार

करते हैं, ये वही लोग प्रश्न करते हैं जो लक्षणावृत्ति को नहीं जानते, भागत्याग लक्षणावृत्ति को नहीं जानते, तब वे लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। अन्यथा बहुत पहले की बात है, पहले गुजरात भावनगर खूब जाते थे, हर साल ही जाते थे, तो वहां एक बार की बात है, शाम को भोजन बनाया, भात पकाया था, थोड़ा बच गया, तो वहां एक माता जी आती थी सेवा करने, तो शाम को उस भात को उन्होंने रख दिया, ढक ढुक के रख दी। हमने कहा ले जाओ खा लो, यहां क्यों रखा है, बोले रहने दो। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो दूसरे दिन सुबह वो आई और उन्होंने क्या क्या बनाया सुबह नाश्ते में प्लेट के सामने रख के रख दिया। हमने कहा ये क्या है, बोले नाश्ता है महाराज। तो किस चीज का बनाया, बोले जो कल शाम को भात था। अब आप गुजराती समझ गए होंगे क्या बनाया उसने, है मुठियो बना दिया वो भात को, बेसन बुसन कुछ मिला दिया और क्या क्या करके मुठिया बना के सामने रख दी। ये वही भात है जो कल शाम का था। देख लो ये क्या हुआ, स्वयं देवदत्त हो गया कि नहीं, भागत त्याग लक्षण। तो कल शाम का भात आज सुबह का क्या हो गया, मुठियो, आज का जो मुठियो कल शाम का क्या, भात भात और मुठियो एक ही हुआ कि नहीं, बोलो क्या दोनों अलग अलग हैं, केवल आकार अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, तत्व एक ही है। तो हमने कहा ये तो ठीक है भाई, भात बिगड़ गया मुठियो, मुठियो बिगड़ गया, पता नहीं क्या बनेगा। सैव परमेश्वर, ये दृष्टि जब बन जाए तो कोई किसी को कोई दुख या राग या मोह ये सब की कोई प्रश्न ही नहीं है। उसी परमात्मा को हम इन स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। अब ये मूल विषय में आ रहे हैं, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आ रहे हैं। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्। ये सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि व्यवहार के लिए दो चीज होना जरूरी है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, चाहे वास्तविक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे पूर्वीय हो चाहे पश्चिमी हो, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, समस्त मानव मात्र के लिए ये निर्विवाद सिद्धांत है कि व्यवहार के लिए ये दो चीज होना जरूरी है। वह है पहला चीज अस्ति, होना, किसी भी वस्तु का होना जरूरी है अस्ति, और दूसरा भाति, उस वस्तु का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान है वस्तु नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, वस्तु है ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि जेब में पैसा लेकर जाओ तो तिवारी की मिठाई आ सकती है, दादर में है ना तिवारी मिठाई, क्या है अभी यहीं पर है, चलो ग्रांड रोड में ही है, तो आपको पता है ना पैसा लेकर जाओ तो तिवारी की मिठाई आ सकती है खरीद के। पैसा जानते हो कि नहीं, पैसा का महत्व तो जानते हो, मिठाई का भी महत्व तो जानते हो, लेकिन पैसे से मिठाई मिलती है जानने पर भी यदि पैसा नहीं हो तो क्या आप मिठाई खरीद पाओगे, है एक ज्ञान होने से क्या फायदा, ज्ञान तो है तो ज्ञान होने से क्या काम, व्यवहार में तो नहीं आया वो ज्ञान। दूसरी वस्तु है परंतु उस वस्तु को तुम जानते ही नहीं हो। अब जो तिवारी की मिठाई है ग्रांड रोड में है, इसका ज्ञान यदि किसी को न हो तो वह कहीं और कहीं से इधर उधर से मिठाई खरीद के ले आएगा, तिवारी की मिठाई तो नहीं ला पाएगा ना,
और जिसको ये पता है कि शुद्ध घी का बनाता है।

0: तिवारी की मिठाई बहुत बढ़िया है, जानता है तो वो पैसा भी है, जानता भी है भी उपलब्ध है तो जाएगा ले आएगा। तो व्यवहार के लिए दो चीज अनिवार्य है, वस्तु होनी चाहिए और वह वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। वस्तु का ज्ञान है वस्तु नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, वस्तु है वस्तु का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है, इसी को यहां संकेत कर दिया। अस्ति वस्तु का होना, प्रकाशते वस्तु का जानना। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते। अब विचार यहां शुरू होता है, वो जो अस्तिता और प्रकाशता, तत्त्व अस्तित्वम प्रकाशत्वम कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम, ये विचारणीय। जो होनापना है, जो वस्तु में जो होनापना है, वो वस्तु और वस्तु में होनापना, ये दो चीज एक ही है कि अलग अलग है? सामान्य व्यक्ति कहेगा एक ही है। आप कहोगे कि कागज है ना, कागज है। कोई कहेगा कागज नहीं है, है? इसके अस्तित्व तो प्रतीत हो रहा है कि नहीं, इसका होनापना तो सभी को बोध हो रहा है कि नहीं, कागज है इसका होनापना, और कागज दिख रहा है और कागज का ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान, कागज का प्रकाशित होना, ये कागज है जानना क्या हुआ, कागज का प्रकाशन हो गया। ये कागज और कागज का होनापना, कागज और कागज का दिखनापना, ये कागज भी ही है कि किसी अन्यत्र है, कागज से अभिन्न है कि भिन्न है, ये प्रश्न यहां बना है, विचार के लिए ये प्रश्न बना है। और यदि कागज का होनापना और कागज का दिखनापना ये कागज में ही सन्निहित है, कागज से भिन्न नहीं है, यदि मानते हो तब ये कागज कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तब फिर ये कागज कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अस्तिता और नाशता ये दोनों विरोधी हैं, और जहां अस्तिता है वहां नाशता हो ही नहीं सकता है। बात समझ गए ना? यदि इसका अस्तिता होनापना इस कागज का अपना स्वरूप है, निजी है, ये मानते हो तो फिर ये कागज कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगा, आग लगाने पर भी नष्ट नहीं होगा, पानी में डालने पर भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके सत्ता बाधित नहीं होगी, क्योंकि अस्तिता तो कभी भी बाध नहीं होती है, और वो अस्तिता स्वतंत्र कागज की अपनी है, तो फिर क्यों बाधित होगी? विचार का एक कोटि है। दूसरी बात है कि यह भासी, ये दिखनापना भी कागज का अपना है, तो इसका मतलब है कि कागज के सामने कभी अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि दिखनापना इसका अपना स्वरूप है, पराधीनता नहीं है, दिखनापना इसका अपना स्वभाव है, निजी है, तो इसको अंधेरे में ले जाकर रखोगे तो भी ये दिखता ही रहना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखता है? इसका मतलब यही हुआ कि ये नाश भी होता है, ये दिख रहा है, और अंधेरे आदि में प्रतिबंधित होने पर यह नहीं दिखता है, नहीं भासित होता है, यह भी अनुभव में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह अस्तिता और भातिता दो चीज किसी अन्यत्र किसी अन्य की है, किसी अन्यत्र है और किसी अन्य की है। जैसे आपको मैं बता दूं, आभूषण में चमकपना है, गहना में, ज्वेलरी में, आभूषण में पीला और चमकपना है। प्रश्न ये हुआ कि उस ज्वेलरी की जो चमक है, पीलापना है, जो शाइनिंग है, वो ज्वेलरी यानी आभूषण की अपनी है कि किसी और की है? आप क्या बताओगे? किसी और की है। किसकी है तो बोले सुवर्ण की, आभूषण की नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? सुवर्ण के आभूषणों में जो चमक है वो सुवर्ण का है, आभूषण का नहीं है। इसी तरह कागज में जो अस्तित्व है वह कागज का नहीं है, कागज का होनापना कागज का नहीं, किसका है? जिसका है उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परमात्मा है, क्योंकि पहले बता दिया गया कि इसका उपादान कारण परमात्मा है। जब परमात्मा इसका उपादान कारण है तब इसका होनापना भी परमात्मा ही है, कागज में नहीं है। जैसे सुवर्ण में चमकपना है तो उस आभूषण के उपादान कारण सुवर्ण होने के कारण सुवर्ण के चमकपना आभूषण में आ गया है। तो कोई भी पूछो, किसी से भी पूछो कि ये सुवर्ण आभूषण में जो चमकपना है, पीला और चमकपना, ये आभूषण का है कि सुवर्ण का है? तो हर व्यक्ति कहेगा सुवर्ण का है। इसी तरह इसका होनापना और भांति प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, ज्ञान, ये कागज का नहीं है। नहीं तो कागज कभी भी अज्ञात नहीं रहेगा, है? तो ये परमात्मा के दोनों, कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम, तच्चास्तित्वम प्रकाशत्वम कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम। विचार ये करना है कि जगत में तमाम ये पदार्थ जो अस्थि और भाति और प्रिय, जोड़ लेना और भी, ये तीन वस्तु पदार्थ के निजी हैं कि अन्य किसी से उधार लिया गया है? तो इसको ये उत्तर है, विचार करोगे तब पता चलेगा कि ये तीन चीज अस्थि भाति प्रिय ये परमात्मा से उधार आया हुआ है। नाम रूप ये उसके अपने निजी है, कागज ये नाम, सफेद ये रूप इस कागज के अपने निजी है, दिखनापना जाननापना होनापना ये परमात्मा की है। हाँ, ये स्पष्ट करना है। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्। आगे प्रश्न किया, किम तेषु तेषु वार्थेषु किंबा सर्वात्मनीश्वरे। क्या जो जो पदार्थ हैं ये होनापना उसी पदार्थ के हैं कि सर्वात्मा ईश्वर के हैं? जो जो वस्तु जाना गया है वो ज्ञान उसी वस्तु में है कि सर्वात्मा परमात्मा? अन्यथा वस्तु के नष्ट होते ही ज्ञान भी वस्तुनिष्ठ हो मानोगे तो वस्तु के नष्ट होते ही ज्ञान नष्ट होना पड़ेगा। आपको लगता है, है? लगता है ऐसा? कागज है, ये कागज का ज्ञान हुआ कि नहीं? आपको लगता है कागज के नाश होते ही कागज का ज्ञान नष्ट हो जाएगा?
1: ना।
0: लगता है? इससे क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान कागज का ज्ञान कागज निष्ठ नहीं, अन्य निष्ठ है। बात समझ गया नहीं? ये बात स्पष्ट करना है। तो और आगे क्या विचार करेंगे, समय ज्यादा हो गया, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: ശിവായ. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Amarneethi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक संत की कहानी जो कि दक्षिण भारत से हैं। इनका नाम है अमरनीति यार। भक्त अमरनीति यार का जन्म चोल प्रदेश में पलयारे नामक स्थान में एक वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी जो कि लेन देन का कारोबार करते हैं। जहां पर इनका जन्म हुआ वह अत्यंत ही शास्य श्यामल खेतों से भरपूर उपज होती थी। अमरनीति स्वर्ण हीरे मोती रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना, प्रभु के भक्तों की को भोजन कराना, उनके वस्त्र कौपानी कौपी आदि की व्यवस्था करना उनकी दिनचर्या थी और यही उनके जीवन का लक्ष्य। तिरुनल्लूर में मंदिर उत्सव के समय एकत्रित होने वाले सभी भक्तों के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने धर्मशाला की स्थापना की और स्वागत सत्कार का उचित प्रबंध किया। एक दिन प्रभु शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और अमरनीति यार के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय अमरनीति यार, जरा मेरी कौपीन की को सही जगह पर रख देना ताकि मैं कावेरी नदी में स्नान कर पुनः आकर अपना कौपीन उनसे ले लूंगा। अमरनीति यार ने कहा कि हे शिव, हे योगी, मैं आपकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करूंगा। और उन्होंने कॉपी उनसे उस शिवयोगी से लेकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव भगवान जो कि उस समय योगी का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अमरनीति यार के यहाँ से उस कॉपी को अदृश्य कर दिया। वे स्नान करके लौटे और कहा, हे अमरनीति यार, मैं नहा के स्नान करके आ चुका हूँ, जरा मेरी कौपीन मुझे वापस लौटा दो। अमरनीति यार ने बहुत ढूंढा लेकिन उस स्थान पर कौपीन नहीं था जहां पर उन्होंने रखा था। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, आपने जो वस्त्र रखने को दिया वह कहीं गुम हो गया है, उसके बदले में कृपया यह नया कौपीन धारण करें। उस शिवयोगी ने आक्रोश में आकर क्रोध से बोला, आज आपकी कलई खुल गई, आपकी नियत का पता चल गया। हे अमरनीति यार, हमारे कौपीन की चोरी करने के इरादे से ही आपने साधु संतों के स्वागत सत्कार का धूम रचाया हुआ है। लज्जित भक्त अमरनीति यार ने उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र आदि स्वीकार करने का आग्रह किया। अंत में ब्रह्मचारी ने एक और पुराना फटासा कौपीन निकाला और कहा, इस फटे कौपीन के वजन के बराबर वस्त्र दे दो। अमरनीति यार ने हर्ष से पूर्व यह शर्त मान ली, जमीन पर डंडा गाड़ कर तुला लगा दिया। एक पलटे में ब्रह्मचारी का कौपीन रख दिया और दूसरे पलटे में धीरे धीरे अनेक प्रकार के वस्त्र चढ़ाना शुरू किया। ढेरों कपड़ों की गांठ रखने पर भी पलटा हिला तक नहीं। संपूर्ण स्वर्ण चांदी जवाहरात आदि रख देने के पश्चात भी कौपीन वाला पलड़ा भारी ही था। अत्यंत निराश होकर अमरनीति यार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यह कहकर पल्ले में बैठ गए। शरीर पर धारण की गई पवित्र विभूत और प्रभु के भक्तों की सेवा के प्रति हमारे प्रेम में यदि सत्य है तो यह दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप कर तिरुनल्लूर के शिव का ध्यान कर जैसे ही अमरनीति यार पल्ले में बैठे तो दोनों पलड़े एकदम बराबर हो गए। इसके साथ ही उस शिवयोगी ब्रह्मचारी शिव ने अपना योगी का रूप छोड़ अपना शिव पार्वती सहित आकाश में दर्शन देने लगे। अमरनीति यार हर्ष से आनंद विभोर हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस तुला के पलड़े में अमरनीति यार की सारी संपत्ति रखने पर भी कौपीन भारी ही था। भगवान भक्त की ये परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या वो इस सांसारिक स्वर्ण जवाहरात आदि को महत्व देते हैं या नहीं। जब अमरनीतिया ने देखा कि उनकी सारी संपत्ति प्रभु के कपड़े के बराबर भी नहीं तुली, तो उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि जीवों की प्रेम भक्ति ही भगवान की भगवत कृपा के समक्ष तुल सकती है। हृदय में प्रवाहित प्रेम भक्ति को अलग पलड़े पर रखना संभव ही नहीं। अतः वे प्रेम पूर्ण हृदय सहित पत्नी और बालक के साथ स्वयं तराजू में के पलड़े में बैठ गए। उसी क्षण दोनों पलड़े समान हो गए। यहाँ दास्य सेवा ध्यान देने योग्य है। सेवा की सार्थकता मैं और मेरी की भावना से मुक्त होने पर है। सेवा करने वाले के हृदय में थोड़ी मात्रा में ही सही कर्तृत्व भाव प्रेम भाव शेष रहता है। उसको निशेष करने के उद्देश्य से चेकिलर, जो कि बहुत बड़े संत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा है, दास सेवा पर सबसे ज्यादा बल दो। हे भक्त, दास को तनिक भी स्वतंत्रता अनुभव करने का अधिकार नहीं होता। उसके सर्वस्व पर स्वामी का यानी कि प्रभु का पूर्ण अधिकार होता है। जिस कौपीन को अमरनीतिया ने एक साधारण पुराना वस्त्र समझा, वही उनके भक्तिभाव और सत्य साक्षात्कार का साधन बना। तिरुवाचकम की पंक्ति स्मरण करें, उसकी कृपा से उसके चरणों में नमन कर कृतार्थ हों। यही है अमरनीतियार की कहानी। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய்.
3: आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिव स्मरण बाण गणैर मोगई निर्जित्य किल विष रिपुन। शत्रु हाथ में आकर, तुम्हारा पाप हाथ में आकर घड़ी तक पहुंचने के जगह तुम फट से उठो, हिम्मत करो, उठो, कुछ भी हो, अब नहीं सोऊंगा, थोड़ा सा हिम्मत करो। एक दिन दो दिन सिर दुखेगा, तीसरे दिन तो फिर 4 बजे उठे बिना सिर दुखेगा। यही दृढ़ भक्ति है, यही तुम्हारी साधना में दृढ़ता है। डटे रहो, लग जाओ साहस से। निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र। सुधियों में इंद्र, सुधींद्र श्रेष्ठा, श्रेष्ठ सुधी व्यक्ति, सुष्टु धी वाले व्यक्ति क्या करते हैं? अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं? बोलो, वो इस बात को जानते हैं कि शत्रु मेरे कौन है, उनसे कैसे लड़ा कर जाए, तो लड़ने की तरीका उनको पता है। इसलिए आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम शिव स्मरण बाण। इन सारी साधनों से जो सज्ज होकर सुधींद्र अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं? किल भी सरिपुन अपने पाप रूपी शत्रुओं को निर्जित्य विजयी, उन शत्रुओं को जीतकर विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कैसा है वो विजय? सानंद मा बहती, फिर से जीवन वह शत्रु रहित होकर आनंद से विचरण करते हैं, क्योंकि अब शत्रु तो है ही नहीं। अब तो अपना साम्राज्य कैसा हो गया? सुस्थिर राज लक्ष्मी, बस पहले ही थोड़ा संघर्ष लड़ते समय थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार इनों को इन तैयारियों से जीत लोगे ना, फिर तुम्हारे राज्य लक्ष्मी सायुज्य सामिप्य साष्ट सारूप्य आदि जो कुछ भी मोक्ष हो वह तुम्हारी स्थिर रहेगी, फिर वहां से कभी भी चलन नहीं होगा। सानंद मावहती, आनंद पूर्वक वह भक्त वह मुक्त पुरुष सुस्थिर राजलक्ष्मी अपने साम्राज्य का वो पूरा का पूरा भोग कर पाएगा, यानी उपयोग कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। ये इसी बात को और आगे शंकराचार्य जी ये तो हो गया शत्रु को जीतने की बात। अब दूसरे भाव से भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम भीत्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री दिव्याश्रितं भुजगभूषणं उद्वहन्ती ये पाद पद्ममिहते शिवते कृतार्थः। हम गरीब क्यों हैं, हम दरिद्र क्यों हैं, बोलो? क्योंकि हम साम्राज्य के लिए या खजाने के लिए प्रयत्न नहीं कर पा रहे। छंदों के उपनिषद में एक प्रसंग आता है, उसी से संबंधित यह श्लोक है, या फिर महाभारत में एक प्रसंग आता है, उससे ही संबंधित है। कहते हैं एक कोई व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब था, दीनहीन था, दरिद्र था, और अपने प्रारब्ध के चलते वह भीख मांगकर दिन गुजारा किया करता था, जीवन यापन करता था, भीख मांगता था, और भीख मांगते हुए दो चार पैसे जो मिले, अक्सर भिखारी लोग जो प्राप्त होता है उसका संरक्षण नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो गया वो पी पाके उड़ा दिया, फिर भीख मांगने, उनको पता है ना कि कल भीख मांगने बैठेंगे मिल ही जाएगा, क्यों कल के लिए रखें भाई, है कल के लिए क्यों रखना है? भीख मांगकर आज जो मिला है वो कल नहीं मिलेगा क्या? जिस प्रारब्ध ने आज हमको दिया है 2 रुपया, वो प्रारब्ध कल 2 रुपया नहीं दिलाएगा, बोलो? कल के लिए क्यों रखना है? कुछ भक्त लोग, अपने शुभचिंतक भक्त लोग, हर साल हम आते हैं 20-25 साल से, या जब जाने लगते हैं, जाने का समय होता है, कुछ माताएं ज्यादा ही प्यार करती हैं, ज्यादा ही ख्याल रखती हैं, तो कोई गाठिया लेके आता है, कोई नमकीन लेके आता है, कोई सेव चूड़ो लेके आता है, कोई खाखरा लेके आता है, कोई बिस्कुट लेके आता है। अब हम कहते हैं कि माता जी ये सब क्या है, अब तो जाने का दिन आ गया है, ये सब इतना सारा? बोले नहीं महाराज, लेके जाइए, ये आपको ले जाने के लिए लाए हैं, ये यहां खा लेना, ये पैकेट जो है वो लेके जाना, वहां काम आएगा, वहां खाने के लिए। तो कभी कभी मैं कहा करता हूं, हम नेपाल से जब यहां आते हैं, न खाखरा लेके आते, न बिस्कुट लेके आते, न फरसान लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? सिर्फ प्रारब्ध लेके आते, क्या लेके आते हैं बोलो? समझ में आ गई? सिर्फ प्रारब्ध लेके आते और वह हमारा प्रारब्ध यहां तुम्हें प्रेरित करके फरसान ला देता है, नमकीन ला देता है, बिस्कुट ला देता है, खाखरा ला देता है, फल ला देता है, कमरों में भरा रहता है। ये व्यवस्था की किसने? बोलो। अब क्या हम यहां जाएंगे तो वो सब व्यवस्था करने वाला प्रारब्ध को छोड़कर जाएंगे? बोलो। यहां जिस प्रारब्ध ने खाने की व्यवस्था मिलाई है, हम जाएंगे तो उस प्रारब्ध को यहीं छोड़कर जाएंगे क्या? बोलिए। प्रारब्ध को तो लेके जाएंगे ना, उस प्रारब्ध यहां व्यवस्था कर सकता है तो वहां व्यवस्था नहीं कर सकता खाने चीज की है? फिर यहां से खाने का चीज ढो के चले ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है? ये आप लोगों का काम है। आप लोग प्रारब्ध पर भरोसा नहीं करते हो तो हम लेके जाएंगे तभी खान को मिलेगा, हम लेके नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। अरे भाई, केवल प्रारब्ध लेके जाओ, वो प्रारब्ध कहीं न कहीं व्यवस्था करेगा, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। ये बात अलग है कि तुमके लिए खाखरा व्यवस्था न करे, लेकिन सूखी रोटी की व्यवस्था तो करेगा कि नहीं? बोलो सूचक भाई, तुम तो नेपाल घूम के आए हो ना परसों, इस साल किया कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने वहां है नेपाल में? तुम खाखरा लेके तो गए नहीं थे, लेकिन रोटी की व्यवस्था की कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने? दाल की व्यवस्था की कि नहीं? सब्जी की व्यवस्था की कि नहीं है? तो करता है महाराज, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा था, वो जो भिखारी दिन भर भीख मांगता था, शाम को खा पी के उड़ा देता था, समझता था कल फिर भीख मांगूंगा आ ही जाएगा। किसी मेरे जैसे कोई व्यक्ति ने उसको जाकर समझा दिया, अरे मूर्ख, अभी तेरे हाथ पांव सब ठीक ठाक है, जवानी है, सब ठीक है, सब के सब उड़ाना नहीं, कुछ बचा के रख, बाद में काम आएगा। तो उसने समझ ली तो कुछ न कुछ बचाना शुरू कर दिया अब हमारे कहने से। तो कहा कि महाराज, कुछ वर्षों में कुछ बच गया। बोले इतना बच गया महाराज, अब क्या करूं? बोले अभी तक तो तू मंदिर के दरवाजे के आगे ऐसे ही सोया करता था। अच्छा है, तेरे पास पैसा हो गया है, गांव के किसी कोने में थोड़ी सी जमीन खरीद ले और एक झोपड़ी बना ले, कम से कम अपना झोपड़ी होगा ना। कल बीमार हो गया, कुछ हुआ तो अपने झोपड़ी में तो बैठ पाएगा ना, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, भाग यहां से। तो फिर आज भागा, फिर आया, उधर भागा, उधर मारे, उधर भागे। बोले ठीक कहा महाराज, जाके एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब वो जमीन के टुकड़े में एक झोपड़ी भी बना ली, वहीं रहने लगा और रोज मंदिर में जाता था, मंदिर के आगे बैठता था, हाथ फैलाता था, मांगता था, कुछ मिले खा पी लेता था और आगे उसी झोपड़ी में सोता था। एक दिन आत्मानंद भी पहुंच गया, कहां उसी भिखारी के, वो छोटा भिखारी है बड़ा भिखारी है ना महात्मा लोग सुनाते ना, कोई एक व्यक्ति गया राजा के यहां, कुछ मांगने के हिसाब से। राजा बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत धन है, उसके यहां मांगूंगा, लाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला बनाऊंगा, यूं त्यूं त्यूं। पहुंचा वहां, पहुंचा तो वो राजा मंदिर के आगे बैठकर मांग रहा था, हे परमात्मा मुझे दे दे, मुझे दे दे, यूं दे त्यूं दे यूं दे। तो उस भिखारी ने कहा कि ये तो भिखारी है भाई, मैं समझ रहा था मैं ही भिखारी हूं, ये तो और बड़ा भिखारी है। अंतर यह है कि मैं छोटा भिखारी हूं, ये बड़ा भिखारी, ये भी मांग रहा है। और जिससे ये मांग रहा है, क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं। तो उसने राजा से नमक कर वो भी मंदिर में प्रार्थना में बैठ गया, कहते हैं ना। ये कहानी कई बार सुना है तुम लोगों ने। तो इसी रहा आत्मानंद पे गया एक दिन उसी झोपड़ी में भिखारी की मांगने। भिखारी कहता महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, फूटे की कौड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक भीख मांगने नहीं जाऊंगा तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्या दूं। पहाड़ में एक कहावत है, सन्यासी के घर में जोगी पावना, पावना बोलते हैं ना मेहमान, सन्यासी के घर में जोगी मेहमान। ले देख लो क्या मिलेगा उसको। स्वयं मांग कर गुजारा करने वाले के यहां दूसरा मांगने वाला मेहमान बन गया। महात्मा ने देखा कि अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो आज पहली बार तुम्हारे यहां मांगने आया, सुबह सुबह पहले मांगा तो हमारा मुंह क्या बोलते हो हैं, बोनी बिगड़ गया। मांगते ही कुछ नहीं है कहने लग गया, तो दिन भर हमारा बेकार जाएगा कि नहीं, बोनी बिगड़ गया। कुछ तो है, कुछ नहीं है। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो ओहो, अरे भिखारी तेरे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं। महात्मा तो आश्चर्य लगा, क्या माल है इसके पास। वो भिखारी कहता महाराज क्यों मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं, मैं सत कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं, बिल ग्रेड के पास भी नहीं। जा क्यों हंसे भाई, कम माल है तुम्हारे पास। हुआ क्या था कि जिस जगह पर उसने झोपड़ी बनाकर वो बैठा था, उस जमीन के नीचे हीरा मोती ज्वारात सब गाड़ के घड़े में गाड़ के रखा हुआ था। महात्मा ने तो उसको देख लिया, इसलिए महात्मा ने कहा तेरे पास तो माल ही माल है। अब वो नहीं देख रहा है, महात्मा तो देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा को दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि का फर्क है ना। शंकराचार्य इस श्लोक के द्वारा इसी दृष्टांत को पुष्टि करने जा रहे हैं। महात्मा ने जब कहा कि तू जहां सो रहा है, जहां पर तेरा बिस्तरा है, उसके नीचे खजाना है, क्या बात बोल रहे हो तुम। बोले मैं सच कह रहा हूं, निकालो उस खजाने को। कैसे निकाले। बोले अब ये झोपड़ी झोपड़ी सब तोड़ फेंको, बिस्तरा को निकाल के बाहर फेंको, झोपड़ी को तोड़ो और ले आओ फावड़ा, खोद डालो यहां। बोले महाराज बड़े मुश्किल से बनाया था ये झोपड़ी, इसको मैं सब तोड़ डालूं। बोले हां, और बड़े मुश्किल से जमीन का टुकड़ा खरीदा था, ये भी खोद के गड्ढा बना लूं। बोले हां, कुछ पाना हो तो खोना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बोलो, कुछ खोए बिना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुझे खजाना चाहिए तो कर हम जो कह रहे हैं। बड़ा हिम्मत, पहले तो बड़ा मुश्किल हुआ उसको समझाना, विश्वास में लेना बड़ा मुश्किल हुआ, महात्मा ने जब विश्वास में लिए तो गया फावड़ा खरीद के लियाया, एक किसी से मांगा, तोड़ डाला झोपड़ी झापड़ी, फेंका बिस्तरा और खुदाई शुरू किया। खोदता गया खोदता गया, उसके जब फावड़ा नीचे लगा, खट आवाज आया, ए मिल गया मिल गया, खजाना मिल गया। फटाफट उस खजाने को जहां से आवाज आई थी उसको मिट्टी हटाकर उसने देखा तो क्या मिलना था, कुछ नहीं, एक पत्थर था, बड़ा बड़ा सा पत्थर में उसका हथियार फावड़ा खट लगा। बोले क्या मिला? बोले क्या मिलना महाराज, ये बड़ा सा पत्थर निकला है, अब इस पत्थर से तुम्हारी खोपड़ी फोड़े कि हम अपनी खोपड़ी फोड़े? तुम बोलते हो खजाना मिलेगा, यहां झोपड़ी उजाड़ डाली, अब मिला क्या पत्थर? कुछ नहीं मिला। महात्मा ने कहा कि पत्थर तो मिला तो सही ना, खोदो, निकालो उस पत्थर को भी। निकालकर फेंका, फिर खोदा, फिर आवाज आई, तो खट्टा फिर आवाज आई, तो मिट्टी साफ करके देखा तो क्या मिला? बोले एक लोहे का प्लेट मिला। खोदो खोदो खोदो खोदो खोदो, निकालो उसको। अरे भाई, लाखों की जमीन बर्बाद हो गई और हजार की प्लेट, लोहे का प्लेट मिला, क्या मिला? बोले बेटा फेंक इसको, इसका इस लोहे के प्लेट का मूल्यांकन मत कर, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो खजाना तुमको मिलने वाला है उसके सामने इसका कोई मूल्य नहीं, इसकी मोह न कर, फेंको, खोदो। और पेड़ खोदा तो खोदते गया तो तांबे का मिला लक्षण, अब उसको विश्वास बढ़ता गया, ए कुछ तो मिल रहा है, पत्थर से लोहा, लोहे से तांबा। महात्मा ने कहा कि बेटा फेंक उसको भी। विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य जी ने इसका संकेत किया है, तो उसको भी फेंका, फिर खोदा तो चांदी का प्लेट मिला। महात्मा ने कहा उसको भी फेंक, खोद फिर, और गहराई में गया तो सोने का प्लेट मिला। वाह मिल गया महाराज, मिल गया महाराज, बड़ा आनंदित हुआ। क्या मिला? बोले सोने का प्लेट मिला। अरे मूर्ख, वो भी काम का नहीं है, फेंक दे और गहराई में जा। जब गहराई में गया तो वास्तव में एक घड़ा जिसके अंदर अनंत अनंत हीरा मोती जवाहरात अरबों खरबों बिल ग्रेड के रुपया से भी ज्यादा। बोलो सुखदेव के पास जो संपत्ति है, क्या वो संपत्ति बिल ग्रेड के पास है? बिल ग्रेड के संपत्ति से ज्यादा सुखदेव की संपत्ति थी कि नहीं? बोलो, हैं, स्वीकार किया कि नहीं तुम लोगों ने? सुखदेव की संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, महत्व ज्यादा है कि बिल ग्रेड्स का? ये उसको वो खजाना मिला है, तो ये दृष्टांत उस पर यह संकेत कर रहे हैं। अब देखा बाहर निकाला तो फिर अब उसको क्या भीख मांगना पड़ेगा? अब दर दर भटकना पड़ेगा? वो तो सम्राट हो गया, दुनिया में उससे बढ़कर तो और दूसरा है ही नहीं। स्वराट भवती, सम्राट भवती, छांदोग्य उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग इस तरह कहा है कि प्रतिदिन जीवात्मा उस ब्रह्म में विचरण करते हुए भी ये ब्रह्मानंद है ये अनुभव नहीं कर पाता, ये उसकी दुर्भाग्य है। इस तरह छांदोग्य उपनिषद में चर्चा की है। निहितम अक्षत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुः, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। अक्षत्रज्ञ अज्ञानी व्यक्ति ऊपरी ऊपरी संचरंत, ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर से भ्रमण तो कर रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं बैठ रहा है, लेकिन अक्षत्रज्ञ उस जमीन के नीचे जो खजाना गड़ा हुआ है उसको पता नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है? संचरंतो न बिंदे हो, एवमेव इमाह सर्वा प्रजा अहर अहर ब्रह्मम गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदेयुः। प्रतिदिन ये क्षत्रज्ञ प्राज्ञ नामक क्षत्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में पहुंचता है, लेकिन बड़ा आनंद से सोया तो कहता है, लेकिन यही ब्रह्मानंद है ये नहीं जानता। ये अपना ही आनंद है ये नहीं जानता है, इसलिए फिर जागृत में भटकने लगता है विषयों के प्रति। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जमीन के अंदर गड़ा हुआ संपत्ति देखने के लिए आंख चाहिए, और आंख होने मात्र से दिखाई नहीं पड़ेगा। हो तंत्र में कहा जाता है, तांत्रिक लोग कुछ अंजन बनाते हैं, वनस्पतियों से, कुछ विशेष वनस्पतियों से आंख में लगाने के लिए अंजन होता है ना, सूरमा, वो बनाते हैं और उसको विशेष तिथि में उसको तंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, और तंत्र द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद उस सूरमा को आंख में लगाते हैं तो गाढ़ अंधकार में भी उनको उसी तरह दिखता है जैसे आप उजेले में देखते हो। उस अंजन की विशेषता है। उधर संकेत किया शंकराचार्य ने, देख लो, इसलिए अंजन की बात कर दिया। कौन सा अंजन है? ध्यान अंजन। ध्यान को वो अंजन के रूप में तुम प्रयोग करो। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम, ये देख लो, अंजन लगाने के बाद तो अंधकार में भी उसको इसी तरह दिखता है जिस तरह तुमको उजाले में दिख रहा हो। तम प्रदेशम भित्वा, अंधकार तुम्हारे दृष्टि को बाधक नहीं कर सकता है वो अंजन लगाने के बाद। महाबली भी ही ईश्वर नाम मंत्र ही, तब शरीर रूपी जमीन में शिव रूपी खजाना, शरीर रूपी जमीन में परमात्मा रूपी खजाना गड़ा हुआ है, और क्षुद्र विषयों में इंद्रियों के पीछे लगकर संसार में भटक रहा है। खजाना कहां है? शरीर रूपी खेत में वो खजाना गड़ा है, वो वहीं रह रहा है, इसी शरीर में रह रहा है, लेकिन उसको न जानने के चलते क्या हो रहा है कि क्षुद्र विषयों के प्रति इंद्रियों के पीछे लगकर भटक रहा है दीनहीन होकर। अब गड़ा हुआ धन देखने के लिए तो आंख में अंजन लगानी पड़ेगी ना भाई, है? तो अंजन क्या है? ध्यान अंजन। शिव ध्यान रूपी जो अंजन है वह तुम आंख में लगा लो तो समवेक्ष तमह प्रदेशम। वेदांत तो तुम लोग सुनते हो, आवरण शक्ति से ढका हुआ है, कूटस्थ साक्षी किससे ढका है? माया के आवरण शक्ति से ढका हुआ है, इसीलिए जहां तुम रहते हो वही वो है, जहां वो है चाहे वही तुम हो। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी है दर्शन को तरसते हैं। बोलो, जिस हृदय में तुम रह रहे हो उसी हृदय में परमात्मा भी तो रह रहा है, लेकिन आज तक एक ही कमरे में रहते हुए भी दर्शन नहीं हो पा रहा है, किसके चलते? अविद्या के पर्दे के चलते। वही तम प्रदेश हम, ये अविद्या ही यहां तम है, और वो अंधकार के चलते तुम्हारी साधारण वृत्तियों से वह दिख नहीं रहा है, तब तुम्हें वो अंधकार में भी वो खजाना दिखे, इसके लिए विशेष चक्षु चाहिए, वह है ध्यानांजना। इसलिए विशेष वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उस विशेष वृत्ति को शंकराचार्य ने ध्यान कहा। ध्यानांजनेन समवेक्ष कहा तम प्रदेशम भीत्वा, ले जी व्यंजन लगाने के बाद तो उसको अंधकार तो उसको आवृत कर ही नहीं सकता है। महाबली भीरीश्वर नाम मंत्री, अब उसको पता चलेगा कि खजाना तो यही है, तो खोदना पड़ेगा कि नहीं है, तो खोदने के लिए फावड़ा क्या है, है? महाबली भी ईश्वर नाम मंत्री, उस परमात्मा के नाम रूपी मंत्र रूपी फावड़ा, कमजोर नहीं हो महाबली भी, वही बलशाली है, वही खोद सकता है, इस आवरणों को भंग कर सकता है, है? जैसे उस दृष्टांत में उसने फावड़ा लाई और खोदा, पांच पांच आवरणों को निकाल के फेंका, यही पंचकोश विवेक ही, वेदांत में पंचकोश विवेक आता है कि नहीं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये तीन क्रमशः, अन्नमय कोश पत्थर का है, हैं? प्राणमय कोश लोहे का है, मनोमय कोश तांबे का है, विज्ञानमय कोश चांदी का है, आनंदमय कोश सोने का है। इन पांच कोशों के अंदर खजाना है, इनको जब हटाओगे अथा तो आदेश नेति नेति अतद व्यावृत्ति, तब जाकर आत्म खजाना मिलेगा, उस पर संकेत कर दिया है। वहां पंचकोश विवेक का है, यहां ध्यानांजन आंख में लगाओ, विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तो ये तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। फिर वही मूला विद्या से जो आवृत हुआ तो वो मूला विद्या उसको आवृत कर नहीं पाए, ढक ना पाए, मूला विद्या को हट जाए, भित्वा तम प्रदेशम, तो साक्षात हो जाएगा। निकालने के लिए पंचकोश विवेक है ये। और यहां नाम मंत्र जप ही, तो ध्यान और जप, ध्यान से आवरण हटेगा, खजाना का पता चलेगा, और जब से आवरण हटेगा, ध्यान से खजाना का पता चलेगा कि यहां पर खजाना है, और जब से उसको ढकने वाला आवरण हटेगा। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्रै दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती, कहते हैं जहां खजाना होता है वहां सर्प जरूर रहता है, जहां मणि रहता है ना, खजाना रहता है, वहां सर्प पहरेदार बनकर रहता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, सर्प के द्वारा सुरक्षित किए हुए उस खजाने को उद्वहंती, साधक भक्त निकाल लेता है, निकाल पाता है। तो कौन से खजाना प्राप्त होता है उसको, ये पाद पद्म मिहते शिवते कृतार्था, तुम्हारे जो चरण रूपी खजाना उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, तब उसके बाद उसका जीवन क्या होता है, कृतार्थ होता है। फिर उसको दीन दरिद्र होकर दुनिया में है भटकना नहीं पड़ता, कृतार्थ हो गया, तो ये साधन सहित साध्य की बात। तो ध्यान और जप, शिव स्वरूप ध्यान और शिव मंत्र का नित्य निरंतर जप ही साधक को शिव चरण रूपी खजाना प्राप्ति में हेतु है। तो ये काम खजाना यही है, बस जरूरत है सुदृढ़ नाम मंत्र ही नित्य रूपी जप रूपी कुदाली से फावड़े से खोदो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

सर्वमित्सर्वगुं सर्वमिज्जगज्जगदित्सर्वगुं सर्वमिज्जगत् यज्जगज्जगदिति जगद् यक्ष्मम् यक्ष्मन्।

त्वमयक्ष्मया यक्ष्मया त्वं त्वमयक्ष्मया परिपर्ययक्ष्मया त्वं त्वमयक्ष्मया परि अयक्ष्मया परिपर्ययक्ष्मया यक्ष्मया परिभुजभुजपर्ययक्ष्म

नमः वारिवस्कृताय नमः उच्चैर्घोषाय नमः घोररूपाय नमः पत्तीशाय नमः पाशमोचकाय नमः औषधीशाय नमः पञ्च

विष्णुवल्लभाय नमः कमलासनकालाग्नये नमः कमलासनपूजिताय नमः कालाधीशाय नमः त्रिकालज्ञाय नमः दुष्टविग्रहवारकाय नमः नाट्यकर्त्रे नमः नटपराय नमः महानाट्यविशारदाय नमः विराड्रूपधराय नमः धीराय नमः वीराय नमः वृषभवाहनाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभाधीशाय नमः वृषात्मने नमः वृषभध्वजाय नमः महोन्नताय नमः महावक्ष्याय नमः महावीराय नमः महाभुजाय नमः महास्कन्धाय नमः महाग्रीवाय नमः महावक्त्राय नमः महच्छराय नमः महाहनवे नमः महादंष्ट्राय नमः महादोष्टाय नमः महोदराय नमः सुन्दरभ्रुवे नमः सुनयनाय नमः सुललाटाय नमः सुगन्धराय नमः सत्यवाक्याय नमः धर्मवेत्रे नमः सत्यज्ञाय नमः सत्यवित्तमाय नमः धर्मवते नमः धर्मनिपुणाय नमः धर्माय नमः धर्मप्रवर्तकाय नमः कृतज्ञाय नमः कृतकृत्यात्मने नमः कृत्यकृत्याय नमः कृतागमाय नमः कृत्यविदे नमः कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः कृतज्ञप्रियकृत्तमाय नमः व्रतकृते नमः व्रतविच्छ्रेष्ठाय नमः व्रतविदुषे नमः महाव्रतिने नमः व्रतप्रियाय नमः व्रताकाराय नमः व्रतधाराय नमः व्रतेश्वराय नमः अतिरागिणे नमः वीतरागाय नमः रागहेतदे नमः विरागविदे नमः रागघ्ने नमः रागशमनाय नमः रागदाय नमः रागिरागविदे नमः विदुषे नमः विद्वत्तमाय नमः विद्वज्जनमानसंश्रयाय नमः विद्वज्जनाश्रयाय नमः विद्वज्जनसव्यपराक्रमाय नमः नीतिकृते नमः नीतिविदे नमः नीतिप्रदात्रे नमः नीतिवित्प्रियाय नमः विनीतिवत्सलाय नमः नीतिस्वरूपाय नमः नीतिसंश्रयाय नमः क्रोधजिते नमः क्रोधिलाय नमः

भाग्यनिधये नमः सौभाग्यदायकाय नमः हितैषिणे नमः हितकृते नमः सौम्याय नमः परार्थैकप्रयोजनाय नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणाय नमः जिष्णवे नमः नेत्रे नमः मशक्काराय नमः भ्राजिष्णवे नमः भोजनाय नमः हविषे नमः भोक्त्रे नमः भोजयित्रे नमः जेत्रे नमः जितारये नमः जितमानसाय नमः अक्षराय नमः कारणाय नमः क्रुद्धाय नमः समरशारदप्लवाय नमः आज्ञापरेच्छाय नमः गंभीराय नमः कवये नमः दुःस्वप्ननाशकाय नमः पञ्चब्रह्मसमुत्पत्तये नमः क्षेत्रज्ञाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः व्योमकेशाय नमः भीमवेशाय नमः गौरीपतये नमः अनामयाय नमः भवाब्धितरणोपायाय नमः भगवते नमः भक्तवत्सलाय नमः वराय नमः वरिष्ठाय नमः नेदिष्ठाय नमः प्रियाय नमः प्रियवदनाय नमः सुधये नमः नियन्त्रे नमः यविष्ठाय नमः क्षोदिष्ठाय नमः यविष्ठाय नमः यमशासकाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः हेमाङ्गाय नमः हेमरूपाय नमः हिरण्यदाय नमः ब्रह्मज्योतिषे नमः अनावेक्ष्याय नमः चामुण्डाजनकाय नमः रवये नमः मोक्षार्थिने नमः जनसंसेव्याय नमः मोक्षदाय नमः मोक्षनायकाय नमः महाश्मशाननिलयाय नमः वेदाश्वाय नमः भूरतस्थिताय नमः मृगव्याघ्रचर्मधाम्ने नमः प्रच्छन्नाय नमः स्फटिकप्रभाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

मोहिन्वन्त्वध्वरम् हृदे त्वा मनासे त्वा दिवे त्वा सूर्या आयत्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवि देवेषु होत्र आयच्छ सोमा राजन् विश्वास्त्वं प्रजा उपावारोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावारोहन्तु शृणोत्वग्निः समिधाहवं मे शृण्वन्त्वापोधिशनाश्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञज्ञ

गूर्तामृतस्य पत्नीः तादेवीर्देवत्रे मह्यज्ञन्नायतोपाहूता सोमस्य पिबत माभेर्मा संविक्था ऊर्जन्धस्वधिशा नेवी द्विसती वीलये।

गानात द्रवीणा स्युर्वे पन्याया ओयि समिद्धा क्राया भूतायेरा बा ओ येरा अग्ने रौहो वा हायव्रत।

द्रविणास्योः भूयिवायि पन्याया सामायुद्धा शो औहो वा प्रायाहूता वृत्राणि जङ्घनादौ हो औ हो वा द्रवीणा

0: समिद्धा शुक्रया ओ हो भूतो हये।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: दशषष्ठाम्
1: ॐ नमः शिवाय. डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे. वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: पिंजरे में पकड़ लिया और कहते हैं बच्चों को कि ले उधर गांव में उधर खेत में ले जाकर छोड़ के आओ. लेके जाते थे बचपन में और करते क्या थे कि उस चूहे के पूंछ में एक रस्सी बांध लेते थे. खेत में जाके पूंछ में रस्सी बांध ली और उसका पिंजरा खोल दिया. रस्सी लंबी है छोड़ दिया. चूहा इतनी तेजी से दौड़ता है और फट से रस्सी खींच लिया बेचारा. वो सोच रहा था कि आजाद हो गया स्वतंत्र हो गया. क्या प्रसन्नता से दौड़ता था. उसे क्या पता कि पूंछ में रस्सी बांधी और खींचने वाला कोई और है. फट से खींच दिया बेचारा. वो उसकी गति रुक गई और फिर धीरे धीरे वो रस्सी को खींच लिया. वो आना नहीं चाहता पीछे लेकिन आना पड़ता है. आना नहीं चाहता है आना पड़ता है. जबरदस्ती आता है. और जब नजदीक आया तो फिर रस्सी ढीली कर दी तो दौड़ा. वो इतनी तेजी से दौड़ के जाता है कि सोचता है कि अब स्वतंत्र हो गया अब आजाद हो गया. लेकिन तब तक फिर वो रस्सी खींच लिया. बेचारा हैरान होता था वो है? अब हमको मजा आता था. वो हैरान होवे और हमको मजा आवे. बच्चों को तो मजा आता है ना है? वो हैरान होवे और बच्चों को मजा आवे. तो ये अलग रूप में खेलता इस तरह. तब फिर कोई बुजुर्ग लोग दिखाई पड़ते थे. वो देखते थे और उसको डांटते थे. ए क्या करते हो बेचारे छोड़ो इसको कितना दुख कितना कष्ट हो रहा है ऐसा करना चाहिए. फिर हम भी डरते थे और छोड़ देते थे बेचारे. कोई दूसरा न डांटे तब तक खेलते रहते थे. और कोई डांटता था बेचारे को परेशान करता है छोड़ दे तो फिर छोड़ देते थे. तब जाकर उसको शांति मिलती थी. और कई बार तो देखते देखते बड़ी विडंबना होती थी. हम उसको छोड़ देते थे. छोड़ दिया कि वो कौवा आ गया उसको क्या पकड़ लिया ले गया. इससे अच्छा तो हम ही खेलते तो बचता कुछ और समय. और हमारा छोड़ना ही उसके लिए मृत्यु बन गया कि नहीं बोलो. कभी कभी तो ये दुर्भाग्य की बात थी उसकी. हम छोड़ देते थे. छोड़ते ही वो दौड़ता था. दौड़ते थे कौवा देख लिया जा फट से पकड़ लिया ले गया मर गया बेचारा. इससे अच्छा तो हम खेलते थे तो और एक दो चार घंटा तो और जीता ना. वो उतना भी नहीं जी पाया. ये तो अनिर्वचनीय सृष्टि है. कौन किससे खेलता है और कौन किससे हंसता है और कौन किससे रोता है और कौन किसको रुलाता है ये तो अनिर्वचनीय. इसका हिसाब करके इसका पार नहीं पाओगे. तो इसलिए तो वेदांत इसको अनिर्वचनीय कहता है. तो स्वच्छ या सृष्ट माविश्य. यदि उस चूहे के हृदय में मैं खुद बैठा हुआ होता तो क्या मेरी ये अवस्था होती ये हिम्मत होती उस चूहे को इस तरह सताने की है? यदि उस चूहे के हृदय में वो कौवा खुद बैठा हुआ होता तो कौवे की हिम्मत होती कि उस चूहे को पकड़ के खाने की. हम लोग हमारी दृष्टि से देखते हैं कि कौवा अलग है चूहा अलग है. खेलने वाला अलग है, खिलाने वाले चूहे अलग हैं इत्यादि, ये अलग अलग दृष्टि है। तब हम इस तरह की परिभाषा करते हैं कि ईश्वर का ये खेल भी क्या खेल है कि अपने ही संतति, अपने ही सृष्टि से उत्पन्न किए हुए जीवों को रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर, वो खेलना भी कोई खेल है उसकी? ये प्रश्न तो तब संभव था जब मैंने पहले जो दृष्टांत दिया उस हिसाब से ये सिद्धांत तो होता, लेकिन नहीं है। स्वेच्छया सृष्टम आविश्य, वो तो हर चीज में प्रविष्ट कर गया। तब और जो पूछम पूछ के साथ बंधने वाला चूहा है वो भी वही है, और जो बांध कर खींचने वाला है वो भी वही है। खींचने वाला अलग नहीं है और खींचा जाने वाला अलग नहीं है। खाने वाला अलग नहीं है, खाया जाने वाला अलग नहीं है। जब एक दृष्टि सभी वही एक है तब फिर वहां ये समस्या नहीं आती है। जैसे कि स्वप्न की सृष्टि क्या है, एक ही तेजस पुरुष की कल्पना है। स्वप्न की जो तेजस माने सृष्टि है, वो स्वप्न माने तेजस पुरुष की सब कुछ कल्पना है। वो तेजस पुरुष ही स्वप्न में सब कुछ हुआ और सब कुछ के रूप में वही अस्तित्व में रह रहा है। ये होता हुआ भी तेजस यदि जग गया तो वो सृष्टि कुछ भी नहीं है, और तेजस पुरुष जब स्वप्न में है तो सब कुछ है। तो वहां पर भी वही नियम है।

माध्यम से, तब फिर इस जगत को आप सहज रूप में ले पाओगे। ये रहस्य बताने के लिए ही वेदांत का प्रवचन किया जाता है, ये सब सिद्धांत हैं। स्वच्छ या शिष्ट माविश्य विश्वम यो मनसी स्थित, और ये सारा का सारा विश्व को उसने अपने ही संकल्प से उत्पन्न किया, और वह जो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य है, जीव है, उन सब के अंतकरण में अंतरात्मा के रूप में ही स्थित भी हो गया। तो ये वेद का वो मंत्र है, तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, वासनात वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि। उसी को तो वासुदेव कहते हैं। वासुदेव उसका नाम नहीं है जो कि कोई वस्तु बना देवे और अलग रखे और अपने आप को अलग बैठ जाए, उसका नाम वासुदेव नहीं है। धागे का नाम वासुदेव है। धागे मिलकर आपस में कपड़ा बन गया और उसी कपड़े में कपड़े की आत्मा के रूप में धागा बैठा हुआ है। उपादान कारण, उपादान की कारणता यही है। मिट्टी घड़ा बनाकर घड़े को अलग छोड़ देता और मिट्टी अलग अपने असंग बनकर रहता, तब घड़े के फूटने का दुख मिट्टी को होता। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन घड़े के फूटने का दुख मिट्टी को नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिट्टी ही घड़ा बना और फूटा तो क्या, इसलिए मिट्टी को घट फूटने का दुख नहीं होगा। घट फूटने का दुख किसको होगा? आपको होगा, क्योंकि आप मिट्टी नहीं है, क्योंकि आपने घड़ा नहीं बनाया है और घड़ के आत्मा के रूप में आप नहीं बैठे हैं और आप अलग बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि घट मेरा इष्ट है, तब जाकर वो घट के फूटने का दुख आपको हो सकता है, मिट्टी को नहीं होगा। इसी तरह जगत की रचना उसी परमात्मा ने की, और पर इस सारे जगत में अंतरात्मा अस्थि भाति प्रिय, आगे आएगा ये प्रसंग, अस्थि भाति प्रिय ये परमात्मा का स्वरूप है। वह इस स्वरूप को बाद किए बिना ही हर पदार्थ में अनुस्वित होकर रह गया। ऐसा नहीं है कि घड़ा बना दिया और घड़े से अलग होकर, अस्थिता को अलग करके, भातिता को अलग करके, प्रियता को अलग करके और घड़ के अंदर बैठ गया, ऐसा नहीं है इनके सहित। क्योंकि ये स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण तो वह जहां रहेगा वहां रहेंगे। स्वच्छया सृष्टमाविश्य विश्वम यो मनसि स्थिता स्तोत्रेण स्तुयते अनेन स एव परमेश्वरा। कौन से परमात्मा की इन स्तोत्र के द्वारा स्तुति करते हैं? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इन स्तोत्रों के द्वारा कौन से परमात्मा की स्तुति करने जा रहे हो? तो उस परमात्मा की स्तुति करने जा रहे हैं जिसने संकल्प से सारे वस्तुओं को, जीव जगत को बनाया और उन जीव जगत में अंतकरण में, मन में अहम के रूप में, और जहां मन नहीं, अंतकरण नहीं है, वहां वह अस्थि भाति प्रिय के रूप में अनुस्वित होकर बैठा हुआ है। ऐसे जो परमात्मा है, अनेन स्तोत्रेण स्तूयते, क्योंकि सैव परमेश्वर, तब बोले अंतकरण में, मन में स्थित होकर रहने वाला तो जीवात्मा है। तो क्या तुम इन स्तोत्रों के द्वारा जीवात्मा की स्तुति करने जा रहे हो? अरे नहीं बाबा, वही परमेश्वर है। ये तुम्हारे न जानने के कारण ही जीव के रूप में परिभाषित किया गया है। भागत त्याग लक्षणा वृत्ति के द्वारा जब आप इनका लक्षणा करते हो, जहद अजहद वह लक्षणा के द्वारा जब विचार करते हो, तो जो मन में स्थित अहम अहम के रूप में स्फुरित हो रहा है, वही उपाधि के सहित अहम अहम होने वाला जीव उपाधि रहित स्वहम हो जाता है। उपाधि के बाद होने पर वही क्या होता है? स्वहम होता है। स एव अहम, अहम एव स, सोहम हमसह, यही तो अजपा गायत्री है। सोहम हमसह, हमसह सोहम, जो मैं हूं वही वह है, जो वह है वही मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं, ये वही लोग प्रश्न करते हैं जो लक्षणावृत्ति को नहीं जानते, भागत त्याग लक्षणावृत्ति को नहीं जानते, तब वे लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। अन्यथा

बहुत पहले की बात है। पहले गुजरात भावनगर खुद जाते थे, हर साल ही जाते थे। तो वहां एक बार की बात है, शाम को भोजन बनाया, भात पकाया था, थोड़ा बच गया। तो वहां एक माता जी आती थी सेवा करने, तो शाम को उस भात को उन्होंने रख दिया, ढक ढुक के रख दी। हमने कहा ले जाओ खा लो, यहां क्यों रखा है? बोले रहने दो। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो दूसरे दिन सुबह वो आई और उन्होंने क्या क्या बनाया सुबह नाश्ते में प्लेट के सामने ला के रख दिया। हमने कहा ये क्या है? बोले नाश्ता है महाराज। तो किस चीज का बनाया? बोले जो कल शाम को भात था। अब आप गुजराती समझ गए होंगे क्या बनाया उसने, है मुठियो बना दिया। वो भात को बेसन बुसन कुछ मिला दिया और क्या क्या करके मुठिया बना के सामने रख दी। ये वही भात है जो कल शाम का था। देख लो ये क्या हुआ, स्वयं देवदत्त हो गया कि नहीं, भागत त्याग लक्षण। तो कल शाम का भात आज सुबह का क्या हो गया? मुठियो, आज का जो मुठियो कल शाम का क्या? भात भात और मुठियो एक ही हुआ कि नहीं बोलो, क्या दोनों अलग अलग हैं? केवल आकार अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, तत्व एक ही है। तो हमने कहा ये तो ठीक है भाई, भात बिगड़ गया मुठियो, मुठियो बिगड़ गया, पता नहीं क्या बनेगा। सैव परमेश्वर, ये दृष्टि जब बन जाए तो कोई किसी को कोई दुख या राग या मोह ये सब की कोई प्रश्न ही नहीं है। उसी परमात्मा को हम इन स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। अब ये मूल विषय में आ रहे हैं, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आ रहे हैं। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्। ये सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि व्यवहार के लिए दो चीज होना जरूरी है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे पूर्वीय हो चाहे पश्चिमी हो, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, समस्त मानव मात्र के लिए ये निर्विवाद सिद्धांत है कि व्यवहार के लिए ये दो चीज होना जरूरी है। वह है पहला चीज अस्ति, होना, किसी भी वस्तु का होना जरूरी है अस्ति, और दूसरा भांति, उस वस्तु का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान है वस्तु नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, वस्तु है ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि जेब में पैसा लेकर जाओ तो तिवारी की मिठाई आ सकती है। दादर में है ना तिवारी मिठाई, क्या है अभी यहीं पर है, चलो ग्राउंड रोड में ही है। तो आपको पता है ना पैसा लेकर जाओ तो तिवारी की मिठाई आ सकती है खरीद के। पैसा जानते हो कि नहीं? पैसा का महत्व जानते हो, मिठाई का भी महत्व जानते हो, लेकिन पैसे से मिठाई मिलती है जानने पर भी यदि पैसा नहीं हो तो क्या आप मिठाई खरीद पाओगे? है एक ज्ञान होने से क्या फायदा? ज्ञान तो है तो ज्ञान होने से क्या काम? व्यवहार में तो नहीं आया वो ज्ञान। दूसरी वस्तु है परंतु उस वस्तु को तुम जानते ही नहीं हो। अब जो तिवारी की मिठाई है ग्रांड रोड में है, इसका ज्ञान यदि किसी को न हो तो वह कहीं और कहीं से इधर उधर से मिठाई खरीद के ले आएगा, तिवारी की मिठाई तो नहीं ला पाएगा ना। और जिसको ये पता है कि शुद्ध घी का बनाता है तिवारी की मिठाई, बहुत बढ़िया है, ये जानता है तो वो पैसा भी है, जानता भी है भी उपलब्ध है तो जाएगा ले आएगा। तो व्यवहार के लिए दो चीज अनिवार्य है, वस्तु होनी चाहिए
और वो वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। वस्तु का ज्ञान है, वस्तु नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। वस्तु है, वस्तु का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, इसी को यहां संकेत कर दिया। अस्ति वस्तु का होना, प्रकाशते वस्तु का जानना। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते। अब विचार यहां शुरू होता है, वो जो अस्तिता और प्रकाशता, तच्च अस्तित्वम प्रकाशत्वम कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्, ये विचारणीय। जो होनापना है, जो वस्तु में जो होनापना है, वो वस्तु और वस्तु में होनापना, ये दो चीज एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सामान्य व्यक्ति कहेगा एक ही है। आप कहोगे कि कागज है ना, कागज है। कोई कहेगा कागज नहीं है, है? इसके अस्तित्व तो प्रतीत हो रहा है कि नहीं, इसका होनापना तो सभी को बोध हो रहा है कि नहीं, कागज है, इसका होनापना, और कागज दिख रहा है और कागज का ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान, कागज का प्रकाशित होना, ये कागज है जानना क्या हुआ, कागज का प्रकाशन हो गया। ये कागज और कागज का होनापना, कागज और कागज का दिखनापना, ये कागज भी ही है कि किसी अन्यत्र है, कागज से अभिन्न है कि भिन्न है, ये प्रश्न यहां उठ बना है, विचार के लिए ये प्रश्न बना है। और यदि कागज का होनापना और कागज का दिखनापना ये कागज में ही सन्निहित है, कागज से भिन्न नहीं है, यदि मानते हो तब ये कागज कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तब फिर ये कागज कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अस्तिता और नाशता ये दोनों विरोधी हैं, और जहां अस्तिता है वहां नाशता हो ही नहीं सकता है। बात समझ गए ना? यदि इसका अस्तिता होनापना इस कागज का अपना स्वरूप है, निजी है, ये मानते हो तो फिर ये कागज कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगा। आग लगाने पर भी नष्ट नहीं होगा, पानी में डालने पर भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके सत्ता बाधित नहीं होगी, क्योंकि अस्तित्व तो कभी भी बाध नहीं होती है, और वो अस्तित्व स्वतंत्र कागज की अपनी है, तो फिर क्यों बाधित होगी? विचार का एक कोटि यह है। दूसरी बात है कि यह भासी, ये दिखनापना भी कागज का अपना है, तो इसका मतलब है कि कागज के सामने कभी अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि दिखनापना इसका अपना स्वरूप है, पराधीनता नहीं है, दिखनापना इसका अपना स्वभाव है, निजी है, तो इसको अंधेरे में ले जाकर रखोगे तो भी ये दिखता ही रहना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं दिखता है? इसका मतलब यही हुआ कि ये नाश भी होता है, ये दिख रहा है, और अंधेरे आदि में प्रतिबंधित होने पर यह नहीं दिखता है, नहीं भासित होता है, यह भी अनुभव में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह अस्तिता और भातिता दो चीज किसी अन्यत्र किसी अन्य की है, किसी अन्यत्र है और किसी अन्य की है। जैसे आपको मैं बता दूं, आभूषण में चमकपना है, गहना में, ज्वेलरी में, आभूषण में पीला और चमकपना है। प्रश्न ये हुआ कि उस ज्वेलरी की जो चमक है, पीलापना है, जो शाइनिंग है, वो ज्वेलरी यानी आभूषण की अपनी है कि किसी और की है? आप क्या बताओगे? किसी और की है। किसकी है तो बोले सुवर्ण की, आभूषण की नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? सुवर्ण के आभूषणों में जो चमक है वो सुवर्ण का है, आभूषण का नहीं है। इसी तरह कागज में जो अस्तित्व है वह कागज का नहीं है, कागज का होनापना कागज का नहीं है। किसका है? जिसका है उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परमात्मा है।
क्योंकि पहले बता दिया गया कि इसका उपादान कारण परमात्मा है। जब परमात्मा इसका उपादान कारण है तब इसका होनापना भी परमात्मा ही है, कागज में नहीं है। जैसे सुवर्ण में चमकपना है तो उस आभूषण के उपादान कारण सुवर्ण होने के कारण सुवर्ण के चमकपना आभूषण में आ गया है। तो कोई भी पूछो, किसी से भी पूछो कि ये सुवर्ण आभूषण में जो चमकपना है पीला और चमकपना, ये आभूषण का है कि सुवर्ण का है, तो हर व्यक्ति कहेगा सुवर्ण का है। इसी तरह इसका होनापना और भाती प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, ज्ञान ये कागज का नहीं है। नहीं तो कागज कभी भी अज्ञात नहीं रहेगा। तो ये परमात्मा के दोनों कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम, तच्चास्तित्वम प्रकाशत्वम कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम। विचार ये करना है कि जगत में तमाम ये पदार्थ जो अस्ति और भाति और प्रिय, जोड़ लेना और भी, ये तीन वस्तु पदार्थ के निजी हैं कि अन्य किसी से उधार लिया गया है। तो इसको ये उत्तर है, विचार करोगे तब पता चलेगा कि ये तीन चीज अस्ति भाति प्रिय ये परमात्मा से उधार आया हुआ है। नाम रूप ये उसके अपने निजी है, कागज ये नाम, सफेद ये रूप इस कागज के अपने निजी है, दिखनापना जाननापना होनापना ये परमात्मा की है। ये स्पष्ट करना है। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्। आगे प्रश्न किया, किं तेषु तेषु वार्थेषु किं वा सर्वात्मनीश्वरे। क्या जो जो पदार्थ हैं ये होनापना उसी पदार्थ के हैं कि सर्वात्मा ईश्वर के हैं। जो जो वस्तु जाना गया है वो ज्ञान उसी वस्तु में है कि सर्वात्मा परमात्मा। अन्यथा वस्तु के नष्ट होते ही ज्ञान भी वस्तुनिष्ठ हो मानोगे तो वस्तु के नष्ट होते ही ज्ञान नष्ट होना पड़ेगा। आपको लगता है, है? लगता है ऐसा? कागज है, ये कागज का ज्ञान हुआ कि नहीं? आपको लगता है कागज के नाश होते ही कागज का ज्ञान नष्ट हो जाएगा? लगता है? इससे क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान कागज का ज्ञान कागज निष्ठ नहीं, अन्य निष्ठ है। बात समझ गए नहीं? ये बात स्पष्ट करना है। तो और आगे क्या विचार करेंगे, समय ज्यादा होगा, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Amarneethi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक संत की कहानी जो कि दक्षिण भारत से हैं। इनका नाम है अमरनीति यार। भक्त अमरनीति यार का जन्म चोर प्रदेश में पलयारे नामक स्थान में एक वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी जो कि लेन देन का कारोबार करते हैं। जहां पर इनका जन्म हुआ वो अत्यंत ही शास्य श्यामल खेतों से भरपूर उपज होती थी। अमरनीति स्वर्ण हीरे मोती रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना, प्रभु के भक्तों की को भोजन कराना, उनके वस्त्र कौपानी कौपीन आदि की व्यवस्था करना उनकी दिनचर्या थी और यही उनके जीवन का लक्ष्य। तिरुनल्लूर में मंदिर उत्सव के समय एकत्रित होने वाले सभी भक्तों के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने धर्मशाला की स्थापना की और स्वागत सत्कार का उचित प्रबंध किया। एक दिन प्रभु शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और अमरनीति यार के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय अमरनीति यार, जरा मेरी कौपीन को सही जगह पर रख देना ताकि मैं कावेरी नदी में स्नान कर पुनः आकर अपना कौपीन तुमसे ले लूंगा। अमरनीति यार ने कहा कि हे शिवभक्त, हे योगी, मैं आपकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करूंगा। और उन्होंने कॉपी उनसे उस शिवयोगी से लेकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव भगवान जो कि उस समय योगी का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अमरनीति यार के यहाँ से उस कॉपी को अदृश्य कर दिया। वे स्नान करके लौटे और कहा, हे अमरनीति यार, मैं नहा के स्नान करके आ चुका हूँ, जरा मेरी कौपीन मुझे वापस लौटा दो। अमरनीति यार ने बहुत ढूंढा लेकिन उस स्थान पर कौपीन नहीं था जहां पर उन्होंने रखा था। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, आपने जो वस्त्र रखने को दिया वह कहीं गुम हो गया है, उसके बदले में कृपया यह नया कौपीन धारण करें। उस शिवयोगी ने आक्रोश में आकर क्रोध से बोला, आज आपकी कलई खुल गई, आपकी नियत का पता चल गया। हे अमरनीति यार, हमारे कौपीन की चोरी करने के इरादे से ही आपने साधु संतों के स्वागत सत्कार का धूम रचाया हुआ है। लज्जित भक्त अमरनीति यार ने उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र आदि स्वीकार करने का आग्रह किया। अंत में ब्रह्मचारी ने एक और पुराना पटासा कौपीन निकाला और कहा, इस फटे कौपीन के वजन के बराबर वस्त्र दे दो। अमरनीति यार ने हर्ष से पूर्व यह शर्त मान ली, जमीन पर डंडा गाड़ कर तुला लगा दिया। एक पलटे में ब्रह्मचारी का कौपीन रख दिया और दूसरे पलटे में धीरे धीरे अनेक प्रकार के वस्त्र चढ़ाना शुरू किया। ढेरों कपड़ों की गांठ रखने पर भी पलटा हिला तक नहीं। संपूर्ण स्वर्ण चांदी जवाहरात आदि रख देने के पश्चात भी कौपीन वाला पलड़ा भारी ही था। अत्यंत निराश होकर अमरनीति यार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यह कहकर पल्ले में बैठ गए। शरीर पर धारण की गई पवित्र विभूत और प्रभु के भक्तों की सेवा के प्रति हमारे प्रेम में यदि सत्य है तो यह दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप कर, तिरुनल्लूर के शिव का ध्यान कर, जैसे ही अमरनीति यार पल्ले में बैठे तो दोनों पलड़े एकदम बराबर हो गए। इसके साथ ही उस शिवयोगी ब्रह्मचारी शिव ने अपना योगी का रूप छोड़ अपना शिव पार्वती सहित आकाश में दर्शन देने लगे। अमरनीति यार हर्ष से आनंद विभोर हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस तुला के पलड़े में अमरनीति यार की सारी संपत्ति रखने पर भी कौपीन भारी ही था। भगवान भक्त की यह परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या वो इस सांसारिक स्वर्ण जवाहरात आदि को महत्व देते हैं या नहीं। जब अमरनीतिया ने देखा कि उनकी सारी संपत्ति प्रभु के कपड़े के बराबर भी नहीं तुली, उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि जीवों की प्रेम भक्ति ही भगवान की भगवत कृपा के समक्ष तुल सकती है। हृदय में प्रवाहित प्रेम भक्ति को अलग पलड़े पर रखना संभव ही नहीं। अतः वे प्रेम पूर्ण हृदय सहित पत्नी और बालक के साथ स्वयं तराजू में के पलड़े में बैठ गए। उसी क्षण दोनों पलड़े समान हो गए। यहाँ दास्य सेवा ध्यान देने योग्य है। सेवा की सार्थकता मैं और मेरी की भावना से मुक्त होने पर है। सेवा करने वाले के हृदय में थोड़ी मात्रा में ही सही कर्तृत्व भाव प्रेम भाव शेष रहता है। उसको निशेष करने के उद्देश्य से चेकिलर, जो कि बहुत बड़े संत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा है, दास सेवा पर सबसे ज्यादा बल दो। हे भक्त, दास को तनिक भी स्वतंत्रता अनुभव करने का अधिकार नहीं होता। उसके सर्वस्व पर स्वामी का यानी कि प्रभु का पूर्ण अधिकार होता है। जिस कौपीन को अमरनीतिया ने एक साधारण पुराना वस्त्र समझा, वही उनके भक्तिभाव और सत्य साक्षात्कार का साधन बना। तिरुवाचकम की पंक्ति स्मरण करें, उसकी कृपा से उसके चरणों में नमन कर कृतार्थ हों। यही है अमरनीतिया की कहानी। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
4: आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिव स्मरण बाण गणैर मोगई निर्जित्य किल विष रिपुन। शत्रु हाथ में आकर, तुम्हारा पाप हाथ में आकर घड़ी तक पहुंचने के जगह तुम फट से उठो, हिम्मत करो, उठो, कुछ भी हो, अब नहीं सोऊंगा, थोड़ा सा हिम्मत करो। एक दिन दो दिन सिर दुखेगा, तीसरे दिन तो फिर 4 बजे उठे बिना सिर दुखेगा। यही दृढ़ भक्ति है, यही तुम्हारी साधना में दृढ़ता है। डटे रहो, लग जाओ साहस से। निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र। सुधियों में इंद्र, सुधींद्र श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सुधी व्यक्ति, सुष्टुधि वाले व्यक्ति क्या करते हैं? अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं? बोलो, वो इस बात को जानते हैं कि शत्रु मेरे कौन है, उनसे कैसे लड़ा कर जाए, तो लड़ने की तरीका उनको पता है। इसलिए आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम शिव स्मरण बाण। इन सारी साधनों से सुसज्ज होकर सुधींद्र अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं? किल भी सरिपुन अपने पाप रूपी शत्रुओं को निर्जित्य विजयी, उन शत्रुओं को जीतकर विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कैसा है वो विजयी? सानंद मा बहती, फिर से जीवन वह शत्रु रहित होकर आनंद से विचरण करते हैं, क्योंकि अब शत्रु तो है ही नहीं। अब तो अपना साम्राज्य कैसा हो गया? सुस्थिर राज लक्ष्मी, बस पहले ही थोड़ा संघर्ष लड़ते समय थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार इनों को इन तैयारियों से जीत लोगे ना, फिर तुम्हारे राज्य लक्ष्मी, सायुज्य सामीप्य साष्ट्य सारूप्य आदि जो कुछ भी मोक्ष हो वो तुम्हारी स्थिर रहेगी, फिर वहां से कभी विचलन नहीं होगा। सानंद मावहती, आनंद पूर्वक वो भक्त वो मुक्त पुरुष सुस्थिर राजलक्ष्मी अपने साम्राज्य का वो पूरा का पूरा भोग कर पाएगा, यानी उपयोग कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। ये इसी बात को और आगे शंकराचार्य जी ये तो हो गया शत्रु को जीतने की बात। अब दूसरे भाव से भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। ध्यानांजनेन समवेक्षतम प्रदेशम भीत्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्रही दिव्याश्रितं भुजगभूषणं उद्वहन्ति ये पाद पद्ममिहते शिवते कृतार्थः। हम गरीब क्यों हैं, हम दरिद्र क्यों हैं, बोलो? क्योंकि हम साम्राज्य के लिए या खजाने के लिए प्रयत्न नहीं कर पा रहे। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, उसी से संबंधित यह श्लोक है, या फिर महाभारत में एक प्रसंग आता है, उससे ही संबंधित है। कहते हैं एक कोई व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब था, दीनहीन था, दरिद्र था, और अपने प्रारब्ध के चलते वह भीख मांगकर दिन गुजारा किया करता था, जीवन यापन करता था, भीख मांगता था, और भीख मांगते हुए दो चार पैसे जो मिले, अक्सर भिखारी लोग जो प्राप्त होता है उसका संरक्षण नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो गया वो पी पाके उड़ा दिया, फिर भीख मांगने, उनको पता है ना कि कल भीख मांगने बैठेंगे मिल ही जाएगा, क्यों कल के लिए रखें भाई, है कल के लिए क्यों रखना है? भीख मांगकर आज जो मिला है वो कल नहीं मिलेगा क्या? जिस प्रारब्ध ने आज हमको दिया है दो रुपया, वो प्रारब्ध कल दो रुपया नहीं दिलाएगा, बोलो? कल के लिए क्यों रखना है? कुछ भक्त लोग, अपने शुभचिंतक भक्त लोग, हर साल हम आते हैं 20-25 साल से, या जब जाने लगते हैं, जाने का समय होता है, कुछ माताएं ज्यादा ही प्यार करती हैं, ज्यादा ही ख्याल रखती हैं, तो कोई गाठिया लेके आता है, कोई नमकीन लेके आता है, कोई सेव चूड़ो लेके आता है, कोई खाखरा लेके आता है, कोई बिस्कुट लेके आता है। अब हम कहते हैं कि माता जी ये सब क्या है, अब तो जाने का दिन आ गया है, ये सब इतना सारा? बोले नहीं महाराज, लेके जाइए, ये आपको ले जाने के लिए लाए हैं, ये यहां खा लेना, ये पैकेट जो है वो लेके जाना, वहां काम आएगा, वहां खाने के लिए। तो कभी कभी मैं कहा करता हूं, हम नेपाल से जब यहां आते हैं, न खाखरा लेके आते, न बिस्कुट लेके आते, न फरसान लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? सिर्फ प्रारब्ध लेके आते, क्या लेके आते बोलो, समझ में आ गई? सिर्फ प्रारब्ध लेके आते हैं और वो हमारा प्रारब्ध यहां तुम्हें प्रेरित करके फरसान ला देता है, नमकीन ला देता है, बिस्कुट ला देता है, खाखरा ला देता है, फल ला देता है, कमरों में भरा रहता है। ये व्यवस्था की किसने? बोलो। अब क्या हम यहां जाएंगे तो वो सब व्यवस्था करने वाला प्रारब्ध को छोड़कर जाएंगे? बोलो। यहां जिस प्रारब्ध ने खाने की व्यवस्था मिलाई है, हम जाएंगे तो उस प्रारब्ध को यहीं छोड़कर जाएंगे क्या? बोलिए। प्रारब्ध को तो लेके जाएंगे ना, उस प्रारब्ध यहां व्यवस्था कर सकता है तो वहां व्यवस्था नहीं कर सकता खाने चीज की है? फिर यहां से खाने का चीज ढो के चले ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है? ये आप लोगों का काम है। आप लोग प्रारब्ध पर भरोसा नहीं करते हो तो हम लेके जाएंगे तभी खाने को मिलेगा, हम लेके नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। अरे भाई, केवल प्रारब्ध लेके जाओ, वो प्रारब्ध कहीं न कहीं व्यवस्था करेगा, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। ये बात अलग है कि तुमके लिए खाखरा व्यवस्था न करे, लेकिन सूखी रोटी की व्यवस्था तो करेगा कि नहीं? बोलो सूचक भाई, तुम तो नेपाल घूम के आए हो ना परसों, इस साल किया कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने वहां है नेपाल में? तुम खाखरा लेके तो गए नहीं थे, लेकिन रोटी की व्यवस्था की कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने? दाल की व्यवस्था की कि नहीं? सब्जी की व्यवस्था की कि नहीं है? तो करता है महाराज, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं दृष्टांत दे रहा था, वो जो भिखारी दिन भर भीख मांगता था, शाम को खा पी के उड़ा देता था, समझता था कल फिर भीख मांगूंगा आ ही जाएगा। किसी मेरे जैसे कोई व्यक्ति ने उसको जाकर समझा दिया, अरे मूर्ख, अभी तेरे हाथ पांव सब ठीक ठाक है, जवानी है, सब ठीक है, सब के सब उड़ाना नहीं, कुछ बचा के रख, बाद में काम आएगा। तो उसने समझ ली तो कुछ न कुछ बचाना शुरू कर दिया हमारे कहने से। तो कहा कि महाराज, कुछ वर्षों में कुछ बच गया। बोले इतना बच गया महाराज, अब क्या करूं? बोले अभी तक तो तू मंदिर के दरवाजे के आगे ऐसे ही सोया करता था। अच्छा है, तेरे पास पैसा हो गया है, गांव के किसी कोने में थोड़ी सी जमीन खरीद ली, खरीद ले और एक झोपड़ी बना ले, कम से कम अपना झोपड़ी होगा ना। कल बीमार हो गया, कुछ हुआ तो अपने झोपड़ी में तो बैठ पाएगा ना, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, भाग यहां से। तो फिर आज भागा, फिर आया, उधर भागा, उधर मारे, उधर भागे। बोले ठीक कहा महाराज, जाके एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब वो जमीन के टुकड़े में एक झोपड़ी भी बना ली, वहीं रहने लगा और रोज मंदिर में जाता था, मंदिर के आगे बैठता था, हाथ फैलाता था, मांगता था, कुछ मिले खा पी लेता था और आगे उसी झोपड़ी में सोता था। एक दिन आत्मानंद भी पहुंच गया, कहां उसी भिखारी क्या, वो छोटा भिखारी है बड़ा भिखारी है ना महात्मा लोग सुनाते ना, कोई एक व्यक्ति गया राजा के यहां कुछ मांगने के हिसाब से। राजा बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत धन है, उसके यहां मांगूंगा, लाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला बनाऊंगा, यूं त्यूं त्यूं। पहुंचा वहां, पहुंचा तो वो राजा मंदिर के आगे बैठकर मांग रहा था, हे परमात्मा मुझे दे दे, मुझे दे दे, यूं दे त्यूं दे यूं दे। तो उस भिखारी ने कहा कि ये तो भिखारी है भाई, है? मैं समझ रहा था मैं ही भिखारी हूं, ये तो और बड़ा भिखारी है। अंतर यह है कि मैं छोटा भिखारी हूं, ये बड़ा भिखारी, ये भी मांग रहा है। और जिससे ये मांग रहा है, क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं। तो उसने राजा से न मांग कर वो भी मंदिर में प्रार्थना में बैठ गया, कहते हैं ना। ये कहानी कई बार सुना है तुम लोगों ने। तो इसी रहा आत्मानंद पे गया एक दिन उसी झोपड़ी में भिखारी की मांगने। भिखारी कहता महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, फूटे की कौड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक भीख मांगने नहीं जाऊंगा तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्या दूं। पहाड़ में एक कहावत है, सन्यासी के घर में जोगी पावना, पावना बोलते हैं ना मेहमान, सन्यासी के घर में जोगी मेहमान, ले देख लो क्या मिलेगा उसको। स्वयं मांग कर गुजारा करने वाले के यहां दूसरा मांगने वाला मेहमान बन गया। महात्मा ने देखा कि अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो आज पहली बार तुम्हारे मांगने आया, सुबह सुबह पहले मांगा तो हमारा मुंह क्या बोलते हो, बोनी बिगड़ गया। मांगते ही कुछ नहीं है कहने लग गया तो दिन भर हमारा बेकार जाएगा कि नहीं, बोनी बिगड़ गया। कुछ तो है, कुछ नहीं है। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो ओहो, अरे भिखारी तेरे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं। महात्मा तो आश्चर्य लगा, क्या माल है इसके पास। वो भिखारी कहता महाराज क्यों मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं, मैं सत कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं, बिल ग्रेड के पास भी नहीं। जा। क्यों हंसे भाई, कम माल है तुम्हारे पास। वह क्या था कि जिस जगह पर उसने झोपड़ी बनाकर वो बैठा था, वो जमीन के नीचे हीरा मोती ज्वारात सब गाड़ के घड़े में गाड़ के रखा हुआ था। महात्मा ने तो उसको देख लिया, इसलिए महात्मा ने कहा तेरे पास तो माल ही माल है। अब वो नहीं देख रहा है, महात्मा तो देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा को दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि का फर्क है ना। शंकराचार्य इस श्लोक के द्वारा इसी दृष्टांत को पुष्टि करने जा रहे हैं। महात्मा ने जब कहा कि तू जहां सो रहा है, जहां पर तेरा बिस्तरा है, उसके नीचे खजाना है, क्या बात बोल रहे हो तुम। बोले मैं सच कह रहा हूं, निकालो उस खजाने को। कैसे निकाले। बोले अब ये झोपड़ी झोपड़ी सब तोड़ फेंको, बिस्तरा को निकाल के बाहर फेंको, झोपड़ी को तोड़ो और ले आओ फावड़ा, खोद डालो यहां। बोले महाराज बड़े मुश्किल से बनाया था ये झोपड़ी, इसको मैं सब तोड़ डालूं। बोले हां, और बड़े मुश्किल से जमीन का टुकड़ा खरीदा था, ये भी खोद के गड्ढा बना लूं। बोले हां, कुछ पाना हो तो खोना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं बोलो। कुछ खोए बिना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुझे खजाना चाहिए तो कर हम जो कह रहे हैं। बड़ा हिम्मत, पहले तो बड़ा मुश्किल हुआ उसको समझाना, विश्वास में लेना बड़ा मुश्किल हुआ, महात्मा ने जब विश्वास में लिए तो गया फावड़ा खरीद के लियाया, एक किसी से मांगा, तोड़ डाला झोपड़ी झापड़ी, फेंका बिस्तरा और खुदाई शुरू किया। खोदता गया खोदता गया, उसके जब फावड़ा नीचे लगा, खट आवाज आया, मिल गया खजाना मिल गया। फटाफट उस खजाने को जहां से आवाज आई थी उसको मिट्टी हटाकर उसने देखा तो क्या मिलना था, कुछ नहीं, एक पत्थर था बड़ा बड़ा सा पत्थर में उसका हथियार फावड़ा खट लगा। बोले क्या मिला? बोले क्या मिलना महाराज, ये बड़ा सा पत्थर निकला है, अब इस पत्थर से तुम्हारी खोपड़ी फोड़े कि हम अपनी खोपड़ी फोड़े? तुम बोलते हो खजाना मिलेगा, यहां झोपड़ी उजाड़ डाली, अब मिला क्या पत्थर? कुछ नहीं मिला। महात्मा ने कहा कि पत्थर तो मिला तो सही, तो खोदो, निकालो उस पत्थर को भी। निकालकर फेंका, फिर खोदा, फिर आवाज आई, तो खट्ट फिर आवाज आई, तो मिट्टी साफ करके देखा तो क्या मिला? बोले एक लोहे का प्लेट मिला। खोदो खोदो खोदो खोदो खोदो, निकालो उसको। अरे भाई, लाखों की जमीन बर्बाद हो गई और हजार की प्लेट लोहे का प्लेट मिला, क्या मिला? बोले बेटा फेंक इसको, इसका इस